आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन झरोखा के अंतर्गत सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

सुबह 6:45 और संध्या 6:45 से सुनवाएंगे आपको कार्यक्रम संगीत सरिता। इन दिनों आप सुन रहे श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। आज 15वां भाग प्रसारित किया जाएगा। आमंत्रित कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भर ने, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। सुबह 7 बजे से भूले बिसरे गीत 7:30 से सुनेगा हम हैं राही प्यार के। सुबह 8:15 से सुनवाएंगे त्रिवेणी, आलेख एवं सर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। चित्रलोक सुनिएगा सुबह 8:30 से। सुबह 9:30 और रात्रि 9:30 से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा प्रसून जोशी पर, आलेख एवं सर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।

सुबह 10 बजे से सुनेगा पिटारा के अंतर्गत सेहतनामा। इसके अंतर्गत पोषण, इस विषय पर आहार विशेषज्ञ और न्यूट्रिशनिस्ट अदिति प्रभु से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा भाग सुनिएगा, प्रस्तुति तेजश्री कांबले की। सुबह 11 बजे रात्रि 11 बजे से रंग तरंग यादों की महफिल सुनेगा, दिन में 12:05 से सुरीला सफर दोपहर 1 बजे से सुनवाएंगे आपको। त्रिवेणी दोपहर 2 बजे से और सदाबहार नगमे प्रोग्राम का वक्त होता है 2:30। सखी सहेली ये कार्यक्रम सुन सकेंगे 2:03 से, 4:00 से पिटारा के अंतर्गत सेल्युलॉइड के सितारे। इसके अंतर्गत अभिनेता कमलजीत से सविता बजाज की बातचीत सुनेगा, प्रस्तुति शकुंतला पंडित की। छाया गीत का पुनर्प्रसारण होता है 5:00 से, 5:30 से सुनेगा तराने नए पुराने। झरोखा सुनेगा 6:30 से, 6:35 से सुनवाएंगे संध्या रंजन।

फौजी साथियों के लिए कार्यक्रम जयमाला प्रसारित किया जाएगा शाम 7 बजे से। शाम 7:45 से सुनेगा इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस। रात 8 बजे से आपको सुन संतोष जोशी का चितलोक सुनेगा रात्रि 8:15 से। आपके लिए सुनवाएंगे आपको रात 9 बजे से।

अपनी राजसभा में अंगद की चेतावनी और चुनौती सुनकर रावण के क्रोध की सीमा न रही। उसे लगा कि ये मूर्ख वानर ये नहीं जानता कि कुंभकर्ण जैसा वीर उसका भाई और इंद्र को परास्त करने वाला योद्धा मेघनाथ उसका पुत्र है। वानरों की सहायता से समुद्र पर सेतु बांध लेने से राम की किस वीरता का परिचय मिलता है। समुद्र तो पक्षी भी लांग जाते हैं। अपने हाथों अपना सिर काटकर शिव के समक्ष अग्नि में होम कर देने वाला वीर अन्यत्र कौन है? रावण अपने बल और पराक्रम की गाथा सुनाते हुए कहता है, मेरी भुजाओं के बल रूपी समुद्र में कितने ही देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। अब कौन ऐसा शूरवीर है जो इनकी अथाह गहराई को पार कर सके? यदि तेरा स्वामी इतना ही बलशाली है तो फिर दूत क्यों कर भेजता है? शत्रु की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाते उसे लज्जा का अनुभव नहीं होता? इन भुजाओं को देख, जिनसे अपना सिर काटकर मैंने होम कर दिया था। अंगद बोले, सिर काटकर होम कर देना एक मायावी द्वारा रचित इंद्रजाल का कर्तव्य है।

0: श्रोताओं नमस्कार। स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना, आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे। इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने। आइए अब सुनते हैं इस श्रृंखला की 15वीं और आखिरी कड़ी।
1: नमस्कार श्रोताओं, स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना श्रृंखला के इस अंतिम कड़ी में आप सभी का स्वागत है, और स्वागत है सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे जी का।
2: नमस्ते
1: शकुंतला जी। इस अंतिम कड़ी में हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो संगीत आज के दौर में गाया जाता है, जो संगीत प्रचलित है, उसमें ऐसे माहौल में शास्त्रीय संगीत का, घरानेदार जो संगीत है, उसका क्या भविष्य आप देखती हैं?
2: आज के आधुनिक युगों में संगीत की अनेक शैलियों का विकास होने के बावजूद भी
1: जी,
2: घराना परंपरा का महत्व आज भी अक्षुण्ण और अखंड बना हुआ है। एक संगीत घराना यानी सिर्फ गायन की एक शैली नहीं, बल्कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की समृद्ध सांगीतिक परंपरा, सौंदर्य दृष्टि और गुरु शिष्य परंपरा का जीवन स्वरूप है
1: जी।
2: है ना, प्रत्येक घराना अपनी विशिष्ट गायकी, स्वर विन्यास, राग विस्तार तथा सौंदर्य बोध के कारण अपनी अलग पहचान रखता है। ये अलग पहचान रखते हुए एक कलाकार विभिन्न घरानों का अध्ययन और श्रवण अवश्य कर सकता है, वहाँ कोई रोकता नहीं है, जिससे उसका संगीत दृष्टिकोण व्यापक होता है, मान लिया। किंतु किसी एक घराने की परंपरा, एक ही घराने की परंपरा में विविध और विधिक्त शिक्षा

0: प्राप्त करने के लिए उसकी गायकी में विशिष्टता, शास्त्रीयता और एक स्वतंत्र सांगीतिक व्यक्तित्व विकसित होता है। यही घराने की वास्तविक देन है, ऐसा नहीं लगता आपको?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: आज आवश्यकता है इस बात की कि घराना परंपरा का संरक्षण और संवर्धन करते हुए उसे वैश्विक स्तर पर नई पीढ़ी तक पहुंचाना, ये हमारा काम है। इससे भारतीय शास्त्रीय संगीत की समृद्ध विरासत सुरक्षित रहेगी, क्योंकि हम परंपरा में फिर एक बार जा रहे हैं तथा विश्व भर में उसकी प्रतिष्ठा और अधिक सुदृढ़ होगी ही होगी, क्योंकि आज किराना घराना विश्व भर फैला हुआ है।
1: जी।
0: इसका कारण क्या है? एक घराने में जो गायक पैदा हुए, ये प्रतिभावान थे,

0: क्योंकि आज किराना घराना विश्व पर फैला हुआ है
1: जी।
0: इसका कारण क्या है? एक घराने में जो गायक पैदा हुए ये प्रतिभावान थे
1: जी,
0: लेकिन उसके साथ भी हर एक पीढ़ी में एक एक गायक कलाकार ऐसे बन गए कि ये परंपरा और उसकी जो गान शैली वो अच्छी तरह से आगे लेके जा सके। विभिन्न घरानों का अध्ययन कलाकार के लिए उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाता है, किंतु किसी एक घराने की परंपरा और साधना अगर आप करते हैं तो उसकी गायकी में एक विशिष्ट शैली, अनुशासन और अलग पहचान विकसित होती है और यही घराना परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता है मुझे लगता है। जयंत जी, हमारे किराना घराने के महान आचार्य और कलाकारों ने अपनी साधना तथा संगीत के माध्यम से इस परंपरा को विश्व भर प्रतिष्ठित किया है
1: जी।
0: आज हमारा भी दायित्व है कि हम इस अमूल्य सांगीतिक विरासत का सम्मान करें, उसका संरक्षण करें, नई पीढ़ी तक उसे पहुंचाए, ताकि भारतीय शास्त्रीय संगीत की ये गौरवशाली परंपरा आने वाले समय में इसी प्रकार सुरों की मधुरता के साथ निरंतर प्रवाहित होती रही
1: जी।
0: इन्हीं शब्दों के साथ मुझे लगता है आज की इस श्रृंखला का हम विराम
1: समापन करेंगे
0: और
1: जैसे संगीत की बैठकों में अंतिम राग गाया जाता है वो भैरवी होता है तो क्या हम अच्छा, भैरवी की कोई बंदी सुनेंगे?
0: बहुत ही फेमस ठुमरी दादरा जो समझो,
1: हाँ।
0: बेगम अख्तर, बाद में शोभा गुरुटू, बहुत सारे ठुमरी गायकों ने गाई है
1: जी।
0: और छोटी सी गायिका मैं भी हूँ, मुझे भी लगा ये गाकर लोगों तक पहुँचाए।
1: क्या बात है?
0: हमारी अटरिया
1: स्वागत है।
2: ಅಜರೇ ತಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಮ

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सरकार ने कहा 2000 रुपए तक के यूपीआई भुगतान पर बैंक कोई शुल्क नहीं लेंगे। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 का आज से गुजरात के गांधीनगर में शुभारंभ। भारत और कनाडा के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर अगले दौर की बातचीत शुरू। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को मजबूत और कारगर बताया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने कहा है कि बैंक 2000 रुपए तक के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई लेन देन और रूपे डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने यूपीआई लेन देन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। एक रिपोर्ट।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह नियम ग्राहकों और छोटे व्यापारियों दोनों पर समान रूप से लागू होंगे। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में किए जाने वाले यूपीआई लेन देन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। अगर भविष्य में कभी डिजिटल लेन देन पर कोई शुल्क जैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाया भी गया तो वह केवल दुकानदारों पर लगेगा, ग्राहकों पर नहीं। हालांकि ये शुल्क भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड लेन देन पर लागू MDR से काफी कम होंगे। सरकार का यह स्पष्टीकरण भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में हालिया संशोधन के बाद यूपीआई लेन देन पर शुल्क की आशंकाओं के बीच आया है। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: प्रतिष्ठित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में शुरू होने जा रहा है। दक्षिण एशिया में पहली बार आयोजित हो रहे इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल संयुक्त रूप से करेंगे। सम्मेलन का विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसमें 65 से अधिक देशों के 2000 से अधिक हितधारक भाग लेंगे।
2: दो दिवसीय वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम में विश्व भर से पर्यावरण विशेषज्ञ, नीति निर्माता, उद्योजक और शोधकर्ताओं हिस्सा ले रहे हैं। इस फोरम का मुख्य उद्देश्य पुरानी सामग्रियों और उत्पादों के पुनरुपयोग, रिसाइकलिंग और पुनर्चक्रण के माध्यम से सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। इस आयोजन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग, हरित ऊर्जा, रोजगार, वित्त और स्टार्टअप इकोसिस्टम जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर 4 प्लेनरी और 16 विषय आधारित सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो में 125 से अधिक प्रदर्शक अपने व्यावहारिक सर्कुलर समाधानों का भी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद 17 और 18 सितंबर को दुनिया भर में 80 विशेष एक्सीलेटर सत्र आयोजित किए जाएंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: भारत और कनाडा ने प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए नई दिल्ली में चौथे दौर की वार्ता शुरू कर दी है। दोनों देश वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 अरब तक बढ़ाने के प्रयास में हैं। 5 दिन की ये वार्ता कल से शुरू हुई जो 18 सितंबर तक चलेगी। इसमें वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, मूल स्थान के नियम तथा तकनीकी व्यापार बाधाओं सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट।
3: दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024-25 में $8.66 अरब से घटकर वर्ष 2025-26 में $7.95 अरब रह गया, जो 8.22% कम है। भारत से कनाडा को प्रमुख निर्यात में दवाइयां, लोहा और इस्पात, समुद्री खाद्य, सूती परिधान, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन शामिल हैं, जबकि कनाडा से भारत के प्रमुख आयात में दालें, मोती और अर्धकीमती पत्थर, कोयला, उर्वरक, कागज और कच्चा तेल शामिल है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेटकिन ने भारत और दक्षिण अमेरिका के प्रमुख व्यापार समूह मर्को

0: मैसूर के बीच तरजीही व्यापार समझौते के विस्तार के लिए बातचीत शुरू करने की घोषणा की है। दोनों मंत्रियों ने वर्तमान समझौते में आपसी हित के क्षेत्रों को शामिल करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को सुदृढ़, सक्रिय, समयबद्ध और बेहद कारगर बताया है। कल नई दिल्ली में राम जेठमलानी स्मृति व्याख्यान के 6वें संस्करण में उन्होंने ये बात कही।
3: Given a choice, a judicial officer,
4: अगर किसी न्यायिक अधिकारी को अंतरिम आदेश देने पर, मामले की सुनवाई टालने पर या अंतिम आदेश पारित करने पर शिकायत का सामना करना पड़े तो हर चरण में उसके खिलाफ शिकायत आ सकती है। यह गंभीर बहस का विषय है कि क्या ऐसी हर शिकायत को किसी सार्वजनिक मंच या वेबसाइट पर रखा जाना चाहिए या फिर इसके लिए न्यायपालिका के भीतर ही एक मजबूत व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था में पूरी निष्पक्षता और बिना किसी पूर्वाग्रह के शिकायतों पर विचार किया जाना चाहिए।
3: इन अ वेरी रिस्पॉन्सिबल मैनर मस्ट डील विद इट।
0: मुख्य न्यायाधीश ने न्यायपालिका में निरंतर सुधार और अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान के लोगों ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वे डबल इंजन सरकार के अंतर्गत सुशासन और विकास की नीतियों का पूरा समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोगों के बीच प्रेम और सद्भावना बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिनसे हृदय में प्रेम, सौहार्द और सद्भावना का विकास हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ये प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, उनके सुरक्षाकर्मी डिनो मौर्या, रोहन रॉय, सूरज पंचोली, रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती और पुलिस अधिकारियों सचिन वाजे तथा परमबीर सिंह सहित कई लोगों के नाम हैं। झारखंड में सीआईडी ने झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में एक कोचिंग सेंटर संचालक संजीत कुमार को गिरफ्तार किया है। रांची के रातू रोड इलाके में शिवांगन कोचिंग सेंटर चलाने वाले संजीत कुमार पर आरोप है कि उसने एजेंट के तौर पर उम्मीदवारों से परीक्षा पास कराने का वायदा कर पैसे वसूले थे। पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर गहरा गया है। यमन के ईरान समर्थित हाउसी विद्रोहियों ने दक्षिणी सऊदी अरब के एक सैन्य हवाई अड्डे पर कई मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। सऊदी गठबंधन के अनुसार इस हमले में 13 नागरिक घायल हुए हैं, जिसके बाद 4 पड़ोसी शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दूसरी तरफ हाउसी विद्रोहियों ने लाल सागर के पास देश के पश्चिमी तट पर अपनी स्थिति मजबूत करना शुरू कर दिया है। इस बढ़ते तनाव के कारण खाड़ी देशों ने ईरान

0: के साथ होने वाली बातचीत को फिलहाल टाल दिया है। जानकारों का मानना है कि यदि ये टकराव और बढ़ा तो लाल सागर के रास्ते होने वाली दुनिया की तेल आपूर्ति बड़ी मुसीबत में पड़ सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन एक दूसरे के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने पर सहमत हो गए हैं, हालांकि उन्होंने इसे लागू कराने से जुड़ी जानकारी नहीं दी। सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन रूस के ऊर्जा ठिकानों पर हमला नहीं करने और रूस भी ऐसा ही करने पर सहमत हुआ है। हालांकि पोस्ट में ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन ऊर्जा प्रतिष्ठानों को इस समझौते के दायरे में रखा जाएगा या क्या दोनों पक्षों ने कोई शर्त रखी है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले डाक से मतदान प्रतिबंधित करने की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना को खारिज कर दिया है। न्यायाधीशों ने संघीय न्यायाधीश के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें डाक सेवा को डाक मतपत्रों से जुड़े नए नियमों को लागू करने से अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। न्यायाधीश सैमुअल एलिटो और क्लेरेंस थॉमस ने संक्षिप्त आदेश से असहमति जताई। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरला, माहे, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी दिन भर ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान में बिजली चमकने की आशंका है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। तीसरा और अंतिम मुकाबला दिल्ली में ही बृहस्पतिवार को होगा। भारत ने पहले T20 मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। एशियाई ट्रैप चैंपियन निशानेबाज सबीरा हारिस के नेतृत्व में 20 सदस्यीय भारतीय दल आज से इटली में ISSF जूनियर विश्व कप शॉटगन में भाग लेगा। प्रतियोगिता का समापन 19 सितंबर को होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद प्रियंका। आज अधिकांश अखबारों ने रक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट को प्रमुखता से दिया है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन ने घटाई सैन्य तैनाती, देश फिर से चौकस। दैनिक भास्कर ने लिखा है, रिपोर्ट में तकनीकी बदलाव का रोड मैप बताया गया। ऑपरेशन सिंदूर से सबक, ड्रोन के 9 फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट शुरू होंगे। अमर उजाला ने भारत चीन में भरोसा और बढ़ा शीर्षक से चीन के विदेश मंत्री का बयान दिया है, सुधार और नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहे रिश्ते। नव भारत टाइम्स की खबर है, साइबर ठगी के आरोप पर बैंक खाते से लेन देन पर 60 दिन तक लग सकेगी रोक, RBI ला रहा नियम। हिंदुस्तान के आर्थिक पन्ने की खबर है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने करोड़ों अंशधारकों को दी बड़ी राहत, PF की सूचनाएं अब WhatsApp पर मिलेंगी। EPFO पोर्टल या उमंग ऐप पर बार बार लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को आसान हिंदी में समझ सकेंगे लोग, कल हिंदी दिवस पर न्यायालय की नई पहल को दैनिक जागरण सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। लोक सत्य ने लिखा है, जन सूचना सेवा में सरल हिंदी सारांश के साथ ऑडियो वीडियो बुलेटिन भी मिलेंगे। जनसत्ता की ये खबर ध्यान खींचती है, लंदन में टेम्स नदी के तट पर पहली बार हुई गंगा आरती, हजारों लोग शामिल हुए, वाराणसी के घाटों जैसी दिखी झलक।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, सरकार ने कहा, 2000 रुपए तक के UPI भुगतान पर बैंक कोई शुल्क नहीं लेंगे। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 का आज से गुजरात के गांधीनगर में शुभारंभ। भारत और कनाडा के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर अगले दौर की बातचीत शुरू। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को मजबूत और कारगर बताया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की। और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाचार।

0: আধুনিক গান শুনলেন, গিয়েছেন শ্যামল ঘোষ, আকাশবাণী কৈলাসহর। এখন আকাশবাণীর দিল্লি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হিন্দি এবং ইংরেজি নিউজ বুলেটিন রিলে করে শোনানো হচ্ছে। এরপর শুনবেন মুম্বাই কেন্দ্র থেকে প্রচারিত বিবিধ ভারতীর অনুষ্ঠান।
1: আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে প্রিয়ঙ্কা অরোড়া। सरकार ने कहा है कि बैंक 2000 रुपए तक के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई लेन देन और रूपे डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने यूपीआई लेन देन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। एक रिपोर्ट।
2: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह नियम ग्राहकों और

0: छोटे व्यापारियों दोनों पर समान रूप से लागू होंगे। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में किए जाने वाले यूपीआई लेनदेन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। अगर भविष्य में कभी डिजिटल लेनदेन पर कोई शुल्क जैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाया भी गया तो वह केवल दुकानदारों पर लगेगा, ग्राहकों पर नहीं।
1: प्रतिष्ठित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में शुरू होने जा रहा है। दक्षिण एशिया में पहली बार आयोजित हो रहे इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल संयुक्त रूप से करेंगे। सम्मेलन का विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। भारत और कनाडा ने प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए नई दिल्ली में चौथे दौर की वार्ता शुरू कर दी है। दोनों देश वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 अरब तक बढ़ाने के प्रयास में हैं। 5 दिन की ये वार्ता कल से शुरू हुई जो 18 सितंबर तक चलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को सुदृढ़, सक्रिय, समयबद्ध और बेहद कारगर बताया है। कल नई दिल्ली में राम जेठमलानी स्मृति व्याख्यान के 6वें संस्करण में उन्होंने ये बात कही। साथ ही मुख्य न्यायाधीश ने न्यायपालिका में निरंतर सुधार और अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। यह वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कृषि आधारित लोक पर्व नुआखाई के अवसर पर देशवासियों, विशेषकर उड़ीसा के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि नुआखाई केवल एक पारंपरिक पर्व नहीं है, बल्कि सामुदायिक भोज और मित्रों तथा परिजनों के मिलन के माध्यम से सामाजिक और पारिवारिक आत्मीयता का प्रतीक भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोगों के बीच प्रेम और सद्भावना बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिनसे हृदय में प्रेम, सौहार्द और सद्भावना का विकास हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन एक दूसरे के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने पर सहमत हो गए हैं, हालांकि उन्होंने इसे लागू कराने से जुड़ी जानकारी नहीं दी। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरला, माहे, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी दिन भर ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। तीसरा और अंतिम मुकाबला इसी स्टेडियम में बृहस्पतिवार को होगा। एशियाई ट्रैप चैंपियन निशानेबाज सबीरा हारिस के नेतृत्व में 20 सदस्यीय भारतीय दल आज से इटली में ISSF जूनियर विश्व कप शॉटगन में भाग लेगा। प्रतियोगिता का समापन 19 सितंबर को होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणु कटारिया। Government has notified rules specifying that banks and payment system providers cannot impose charges on UPI transactions of up to 2,000 rupees. Finance Ministry issued a gazette notification yesterday under the Payment and Settlement Systems Act 2007. It listed UPI transactions of up to 2,000 rupees and debit card payments made through RuPay as electronic payment modes for which customers

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
2: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए। तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।

0: हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: श्रोताओं, इस संदेश से ठीक पहले आपने सुना था बेशरम फिल्म का गाना अमितोष नागपाल, सुजीत शेट्टी और रणवीर कपूर की आवाजों में। अब आपको सुनवा रहे हैं एक पारंपरिक रचना जिसे गाया है कनिष्क सेठ और कविता सेठ ने, संगीतबद्ध भी किया है कनिष्क सेठ और कविता सेठ ने ही। फिल्म का नाम है जुग जुग जियो।

आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश पद्मावत फिल्म से आवाजें श्रेया घोषाल और सुरू खान की, एम तुराज के बोल और संजय लीला भंसाली की है तर्ज़।

0: उसी के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है कि शोधन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: शोधन ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे की शोधा आ गई सुबह सुबह, मुझे वे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

0: समझता ही रहा हूं।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे गीतकार की जो विज्ञापनों की दुनिया से फिल्मों की दुनिया में आया और जिसके गाने सुनना आपको

जी हाँ, आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम बातें कर रहे हैं एक ऐसे गीतकार की जिसके शब्दों में लालित्य है, कविता है और है जज्बात का समंदर।

प्रसून जोशी का जन्म 16 सितंबर 1971 को हुआ था। बचपन से ही उन्हें लिखने पढ़ने का शौक रहा और आगे चलकर उन्होंने दिल्ली के एक संस्थान से एमबीए की। आगे चलकर वो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करने लगे। लिखने का शौक भी जारी रहा और उनकी कॉपीराइटिंग में लिखने का वो शौक झलकता रहा। तब तक प्रसून जोशी की किताब भी छप चुकी थी। इस किताब का नाम था मैं और वो। जब ये किताब छपकर आई तब प्रसून की उम्र केवल 17 साल थी। कई बरस तक प्रसून एडवर्टाइजिंग की दुनिया में सक्रिय रहे। उसके बाद उन्होंने गायिका शुभा मुद्गल के लिए कुछ एल्बम के गीत भी लिखे। फिल्मों में उनका पहला कदम था फिल्म लज्जा के जरिए। राजकुमार संतोषी की इस फिल्म के कुछ गाने प्रसून जोशी ने लिखे थे। इसके बाद उन्हें यश चोपड़ा प्रोडक्शंस की फिल्म हम तुम में गाने लिखने का मौका मिला। हम तुम के गाने बहुत चले।

इसके बाद तो जैसे मुंबई फिल्म जगत में प्रसून जोशी के कदम जम गए। उन्होंने फिल्म फना के लिए भी गाने लिखे और इस फिल्म के सारे गाने बेहद लोकप्रिय हुए। प्रसून जोशी की सबसे बड़ी खासियत है वो जिंदगी के बहुत मामूली से जज्बात को पकड़ते हैं और अपने शब्दों के जरिए उसे एक खास रंग दे देते हैं। उनके गीत दिल को छू जाते हैं। फिल्म फना का ये देशभक्ति गीत सुनिए। ये उस दौर का गाना है जबकि देशभक्ति के बहुत नगमे नहीं आ रहे थे। नई फिल्मों में ऐसे गानों की जगह ही कहां बनती है, पर प्रसून जोशी ने अपनी कलम के जादू से इस गाने को अनमोल बना दिया।

प्रसून जोशी ने इसके बाद फिल्म रंग दे बसंती की पटकथा भी लिखी और इस फिल्म के गीत भी रचे। रंग दे बसंती अपनी तरह की एक अनमोल फिल्म थी, सबसे अलग, और इस फिल्म का असर भी बड़ा गहरा था। जरा इस फिल्म का ये गाना सुनिए जो आपके दिल की गहराई तक उतर जाएगा।

आमिर खान की फिल्म तारे जमीन पर जब बनी तो इसके गाने लिखने की जिम्मेदारी मिली प्रसून जोशी को, और इस फिल्म के लिए प्रसून जोशी ने कुछ अलग ही गीतकारी

फिल्म के इस गाने के लिए प्रसून जोशी को मिला सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ गीतकार का राष्ट्रीय पुरस्कार। आपको बता दें कि प्रसून जोशी कुल 2 बार सर्वश्रेष्ठ गीतकार का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल कर चुके हैं। तारे जमीन पर के अलावा फिल्म चिटगांव के एक गाने के लिए भी उन्हें नेशनल अवार्ड मिला था।

जुलाई 2013 में आई फिल्म भाग मिल्खा भाग, इस फिल्म की कथा, पटकथा, संवाद और गीत प्रसून जोशी ने लिखे थे। इस फिल्म का ये गाना सुनिए जो फिल्म का शीर्षक गीत तो है ही, साथ ही इस गाने में प्रसून जोशी ने फिल्म के पूरे मर्म को समेट दिया है।

अब आपको सुनवाते हैं प्रसून जोशी के कुछ अनमोल नगमे। साल 2009 में आई फिल्म लंदन ड्रीम्स का ये गाना जो एक प्रयोग था, और ये प्रयोग बड़ा कामयाब रहा।

जैसा कि हमने आपको बताया, प्रसून जोशी ने गायिका शुभा मुद्गल के कुछ एल्बम्स के लिए नगमे भी लिखे। आपके सावन एल्बम का ये शीर्षक गीत सुनिए।

0: लगता है।
1: प्रसून जोशी का रचना कर्म अभी भी जारी है और उनके चाहने वाले उनसे नित नए नगमों की उम्मीद करते रहते हैं। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गीतकार प्रसून जोशी पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले।
2: आज के फनकार।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
1: कुछ लिखा
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
2: करो वादा,
3: हाँ जी वादा।
0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध, बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
4: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
3: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।

0: नमस्कार। सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। न्यूट्रिशन अर्थात पोषण, इस विषय पर आहार विशेषज्ञ और न्यूट्रिशनिस्ट अदिति प्रभु से ममता सिंह की बातचीत, और इस बातचीत की दूसरी कड़ी लेकर हम हाजिर हैं। तो चलिए सुनते हैं।
1: अदिति जी, ये जो कार्यक्रम है, हमारे बहुत सारे श्रोता सुनते हैं, ग्रामीण श्रोता भी सुनते हैं और शहरी श्रोता भी सुनते हैं। पोषण सप्ताह मनाया जाता है, तो पोषण सप्ताह आप अपने पैमाने पर भी मनाती होंगी, क्या कुछ शामिल करती हैं इसमें, किस तरह से लोगों को जोड़ पाती हैं?
2: पोषण सप्ताह सितंबर के पहले हफ्ते में मनाया जाता है, 1 से 7 तारीख के बीच में, और ये कई सालों से चल रहा है
1: जी।
2: और इस सप्ताह में हम बहुत जनहित के लिए प्रचार करते हैं, बहुत ज्यादा रोड स्किट्स होते हैं ग्रामीण लेवल पे या आदिवासियों के लेवल पे, हम जाके वहाँ पे कैंप्स करते हैं या हेल्थ कैंप्स होते हैं सोसाइटीज में, ऐसे बहुत सारी चीजें चलती है। हर डाइटिशियन अपने तरीके से कुछ ना कुछ करती रहती है, वो चाहे अपने क्लिनिक में थोड़े से छोटे मोटे कैंप हो या कॉलेज में जाके सिखाना हो या कॉरपोरेट जॉब्स हैं जहाँ पे वहाँ पे जाके आहार के ऊपर बातें करनी हो, ताकि लोगों को आहार के बारे में और आहार के महत्व के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले और उनको ये पता चले कि कहाँ और किसके पास जाना है सही जानकारी मिलने के लिए। ये इस चीज़ के लिए हम ये पूरा सप्ताह इस्तेमाल करते हैं। ये हम कई सालों से कर रहे हैं, मगर पिछले कई सालों से पोषण माह ज्यादा करके मनाया जाता है, जो कि सितंबर का पूरा महीना होता है। इसका मतलब अब हम एक हफ्ता नहीं, पूरा महीने भर हम कुछ करते रहते हैं, जैसे कुछ छोटा मोटा कुछ भी हो जो जनरल पॉपुलेशन या लोगों के लिए फायदेमंद हो, ये हम ज्यादा इसके ऊपर ध्यान देते हैं।
1: जी बिल्कुल, भारत सरकार की ओर से एक मुहिम चलाई जाती है, बहुत सारी कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं, क्योंकि बहुत सारा वर्ग कुपोषण का शिकार है आज भी, तो उन्हें पोषक तत्व मिले और कुपोषण से रहित अपना देश हो जाए, ये एक मुहिम है। और अब हमें बताइए कि ये जो वर्किंग वुमेन होती हैं और जो हाउसवाइफ होती हैं, तो उनके लिए किस तरह के पोषक तत्व जरूरी है, किस तरह के न्यूट्रिशन उन्हें लेने चाहिए?
2: अगर हम पोषण के बारे में बात करें और औरतों के बारे में बात करें, तो मेरी हमेशा एक बड़ी शिकायत होती है कि औरतें जो होती हैं वो सबका करने में इतनी मशरूफ हो जाती है, वो हमेशा खुद को भूल जाती है। भले आप हाउसवाइफ हैं या भले आप जॉब करते हैं, दोनों तरीके से आप बहुत ज्यादा काम करते हो
1: जी जी,
2: कोई भी किसी से कम नहीं होता। बहुत बार हमें लगता है अरे ये कुछ नहीं कर रहे, ये तो हाउसवाइफ है, इनको घर संभालना है। नहीं, अगर आप देखें कई बार हाउसवाइफ जो है पूरे दिन में इतना काम करती है, उनको अलग से वर्कआउट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
1: जी बिल्कुल,
2: और दोनों के लिए अपना सही वक्त पे खाना, सही मात्रा में खाना बहुत जरूरी हो जाता है
1: जी।
2: अगर आप वर्किंग हैं तो अक्सर ये दिक्कत आती है कि सुबह उठे डब्बा बनाया तो अपना नाश्ता भूल गए, तो अपने नाश्ते का समय निकाल के फुर्सत से बैठ के नाश्ता करना जरूरी है। फिर उसके बाद आपके खाने में प्रोटीन की मात्रा, फाइबर की मात्रा सही है कि नहीं, ये देखना जरूरी है। और पूरे दिन में पानी के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। वैसे ही घर की जो औरतें हैं जो घर संभालती हैं, उनको ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या वो वक्त पे खा रही हैं, या क्योंकि वो किचन में काम कर रही है बहुत बार छोटा मोटा खाया जा रहा है और उसके वजह से भी तबीयत खराब हो रही है, क्योंकि हमें चखने की तो बहुत आदत होती है। चलो ये खा लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, इसमें दिक्कत हो जाती है
1: जी, बिल्कुल।
2: तो औरतों को अपनी सेहत का ध्यान रखना जरूरी है, उनको ये देखना जरूरी है कि क्या उनको 7 से 8 घंटे नींद मिल रही है, 2 से 3 लीटर उनका पानी दिन का जा रहा है, क्या उनका शारीरिक काम हो रहा है, जैसे चलना हो गया, जिम जाना जरूरी नहीं है बट कोई तो एक्सरसाइज होनी चाहिए, वो भले 10-15 मिनट हो मगर खुद के लिए वक्त निकालना उतना जरूरी है। और उसके अलावा सही वक्त पे खाना और संतुलित खाना, जहाँ पे वो ध्यान दे कि उनके खाने में प्रोटीन हो, फाइबर हो, आयन युक्त जैसे मोरिंगा हो गया या फिर

0: हलीम या अलीव के बीज हो गए या फिर अनार हो गए, ये थोड़ी सी चीजें आपको खाने में होनी चाहिए, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद ठहरता है।
1: जी, आपने कहा पानी पीना चाहिए प्रचुर मात्रा में। कुछ लोगों को देखा पानी एक साथ गट गट गट गट पी लेते हैं, एक बॉटल या दो तीन गिलास पानी, तो ये तरीका सही है? थोड़ा तरीका भी बताइए किस तरह से पीना चाहिए पानी।
0: कुछ लोग बहुत जल्दी में पानी पी लेते हैं, कुछ लोग सुबह उठ के पानी पी लेते हैं और पूरा दिन पानी नहीं पीते। हमारा शरीर इस तरीके से काम नहीं करता
1: जी, सही
0: उसको
1: तरीका।
0: सही वक्त पे पानी की जरूरत होती है। आपको प्यास लग रहा है, इसका मतलब आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, मतलब पानी की मात्रा आपके शरीर में कम हो गई है। प्यास लगने तक राह ना देखिए,
1: बिल्कुल
0: धीरे धीरे थोड़े थोड़े वक्त पे थोड़ी थोड़ी घूंटों में पानी पीजिए। और मैं हमेशा बोलती हूँ पानी हमेशा ग्लास में लेकर पीजिएगा,
1: जी,
0: ना बॉटल से। आप बैठकर पियो खड़े रहकर पियो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ग्लास में इसलिए ताकि आपको एक क्षण की क्यों ना हो थोड़ी सी एक पॉज मिल जाए, एक ठहराव मिल जाए, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है भागदौड़ की जिंदगी में, कि आप वो एक दो सेकंड का काम है कि थोड़ा सा रुक लो, थोड़ा ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान दो, आप किस तरीके से पूरे दिन में सांसें अंदर बाहर कर रहे हैं, थोड़ा सा ठहराव आने दो, पानी पी लीजिए और फिर अपने काम पे आगे बढ़ जाइए। कहीं अगर हम देखें तो अगर हम 2-3 लीटर की बात करें पूरे दिन में, तो आपको एक ग्लास एक घंटे में धीरे धीरे करके पी लेना चाहिए, धीरे धीरे, ये जरूरी है। गर्म पानी पिए ठंडा पानी पिए वो आपके ऊपर है, आप बैठकर पियो खड़े रहकर पियो वो आपके ऊपर है, मगर धीरे धीरे पीना बहुत जरूरी है।
1: जी, बहुत भ्रांति थी, बहुत बड़ी आपने दूर की। एक गाना सुनते हैं यहाँ पर।
0: जी।

0: और अब हमारे श्रोताओं को बताइए कि आज एक बहुत बड़ी समस्या और है, डायबिटीज के मरीज बढ़ रहे हैं और थायराइड की समस्या ज्यादातर हो रही है, तो क्या आहार के जरिए, सही न्यूट्रिशन के जरिए क्या इस पर नियंत्रण किया जा सकता है?
1: अगर हम डायबिटीज की बात करें तो अगर आपके फैमिली में या आपके परिवार में माता पिता को, चाचा चाची को, जो इमीडिएट फैमिली होती है, तुरंत आपके माता पिता, भाई बहन, किसी को भी डायबिटीज है, आपको डायबिटीज होने का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आपको ये जानकारी है तो आपको आपके आहार या पोषण का ध्यान पहले से रखना शुरू कर देना चाहिए। आपके खाने में क्या होना चाहिए ये आप समझ गए तो आप अपने ब्लड शुगर को आराम से मैनेज कर पाओगे, आपको डायबिटीज के लेवल पे आप पहुंचोगे नहीं। अगर आप प्री डायबिटीज के लेवल पे किसी वजह से पहुंच गए, सही आहार से आप उसको रिवर्स कर सकते हो। अगर आपका लेवल डायबिटीज में चला गया और आपको डॉक्टर ने डायग्नोस कर लिया कि आपको डायबिटीज है या आपको शक्कर की बीमारी लग गई है, तो उस वक्त के बाद से आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, मतलब वो चला जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। उस लेवल के बाद से आप बस वो शक्कर की मात्रा को कंट्रोल में रख सकते हैं। तब भी आपको आहार की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो टाइप का आपको डायबिटीज है, भले वो जेस्टेशनल डायबिटीज जो कि प्रेगनेंसी में होता है, टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, उसके हिसाब से और आपको कौन सी दवाएं दी जा रही है और आपका करंट ब्लड शुगर कितना है, उस हिसाब से आहार को डिजाइन किया जाता है, ताकि आपका जल्द से जल्द शुगर कंट्रोल में आए, आपको दवाइयां कम लेनी पड़े, या अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं तो वो अच्छे से आपके ऊपर काम करे कम से कम डोज में। तो आहार इतनी आपकी हेल्प कर सकता है कि आपका 16-15 ऐसा HbA1c है तो वो 7-6 पे भी लेकर आ सकते हैं 3-4 महीने में।
0: जी बिल्कुल।
1: बट लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट, दवाई ले लेंगे मगर खाना नहीं छोड़ेंगे और यहाँ पे दिक्कत आती है। बिना खाने को ठीक किए आपकी दवाई काम नहीं करने वाली है या कम काम करेगी।
0: बिल्कुल सही बात है, मतलब कि हमारे जीवन में सही और संतुलित आहार का बहुत महत्व है।
1: बहुत महत्व है।
0: अदिति जी, हमें बताइए कि सप्लीमेंट की कितनी जरूरत होती है पोषक तत्वों के साथ साथ? कई बार लोग खाना पीना तो ठीक ठाक रखते हैं, उसके बावजूद उन्हें विटामिन की कमी होती है, कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो सप्लीमेंट किस तरह से लेना चाहिए और कितना इसका महत्व है और कितनी हानि है?
1: सप्लीमेंट कुछ लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, कुछ लोगों के लिए वो जरूरी नहीं है। अगर आप संतुलित आहार ले रहे हैं, आपका रहन सहन सही है, नींद ठीक है, पानी ठीक है, आपको कोई भी सिम्टम्स नहीं है, तो अक्सर आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। मगर अगर आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं या आपके रिपोर्ट्स में आ गया कि आपको कोई विटामिन या मिनरल की कमी है, तो कभी कभार आपको वो लेने पड़ते हैं।
0: जी।
1: जो भी आप सप्लीमेंट ले वो हमेशा डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह से ले, और डाइटिशियन आपको दवाई नहीं दे सकते हैं, डाइटिशियन आपको विटामिन मिनरल के बारे में जरूर बता सकते हैं, मगर ये विटामिन और मिनरल भी एक समय के लिए लेना चाहिए, एक उसका विशिष्ट रूप होता है जिस तरीके से लेना चाहिए, और विटामिन मिनरल्स ऐसी चीज है जिसका कॉम्पोजिशन अलग अलग होता है सप्लीमेंट में, तो वो पेशेंट की जरूरत के हिसाब से हम देते हैं, बिना किसी की सलाह के, बस इसलिए क्योंकि विटामिन मिनरल मिल रहा है और किसी दोस्त ने या रिश्तेदार ने बता दिया आपको विटामिन ये लेना है, कैल्शियम ये लेना है, आपको वो अवॉइड करना चाहिए। अगर सलाह दी है तब भी ले लीजिए, और उतने वक्त के लिए ही लेना जितना बताया गया है।
0: बिल्कुल,
1: वो सही वक्त पे लेना, सही तरीके से लेना जरूरी है। अभी कौन से विटामिन मिनरल ज्यादातर लगते हैं? अगर आपकी डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, मतलब आपके शरीर में कोई भी विटामिन या मिनरल की कमी बहुत ज्यादा है, तब आपको सप्लीमेंट की जरूरत लगती है। उसके साथ साथ आपको आहार को भी आपके ठीक करना पड़ता है, क्योंकि आपका जो रोज का आहार है वो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में आपकी जरूरतें पूरा करेगा।

0: सप्लीमेंट जो कि आपका बैकलॉग है, जो कि आपके शरीर में ऑलरेडी कम है, वो चीजें को भरेगा। तो वो सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। वैसे ही जैसे विटामिन डी की बात करें, तो विटामिन डी का मेन तो धूप से मिलता है, मगर हम आजकल धूप में ज्यादातर जाते नहीं हैं, या फिर हम पूरे कपड़े पहनते हैं, या ऐसे कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, क्रीम्स या कुछ भी शरीर पे, जिससे विटामिन डी अब्सॉर्ब नहीं होता।
1: अच्छा।
0: और खाने में विटामिन डी की मात्रा कम है, तो आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ जाती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप विटामिन डी बहुत, क्योंकि कम है, सबको कम होता है, हम हर रोज लेंगे या हर हफ्ते लेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि विटामिन डी फैट सॉल्युबल है, उससे आपकी बॉडी में विटामिन डी स्टोर हो सकता है और आपको टॉक्सिसिटी हो सकती है। सो बिना सलाह के कभी भी उनको नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज, आप कोई भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं या कोई डाइटिशियन के पास जा रहे हैं, आप जो भी सप्लीमेंट ले रहे हैं, एक चिट्ठी पे लिख के उन डॉक्टर को थमा दीजिए कि मैं ये ऑलरेडी ले रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि दिक्कत ये हो जाती है, आप एक डॉक्टर के पास गए, उन्होंने भी कैल्शियम दिया, किसी और ने भी कैल्शियम दिया, और आपने उनको बताया नहीं, तब भी ज्यादा हो सकता है आपके लिए। तो सप्लीमेंट कभी भी कितने भी आसानी से मिले, कितने भी करीबी रिश्तेदार ने आपको बताए हो, बिना जांच पड़ताल या बिना कोई प्रोफेशनल सलाह के नहीं लेने चाहिए।
1: जी बिल्कुल। एक गाना सुनते हैं यहाँ पर।
0: जी,
1: कौन सा गाना आपके पसंद का?
0: आजकल तेरे मेरे प्यार।
1: जब सेहत सही रहती है तो भाई जाहिर सी बात है मन ठीक रहता है।
0: हाँ,
1: मन में अच्छे विचार आएंगे, अच्छे विचार आएंगे तो प्यार की भावना भी उपजती है। सुनते हैं ये गाना।

अदिति जी, हमें बताइए कि कुछ लोगों का ये मानना होता है कि खाने से पहले एक गिलास पानी पी लो, खासतौर से वो लोग जो वजन घटाने की मुहिम चला रहे होते हैं, और कुछ लोगों का ये मानना होता है कि खाने के बीच बीच में पानी पीते जाओ थोड़ा थोड़ा, और

0: कुछ लोग ये मानते हैं कि खाना खाने से पहले ना तो पानी पीना है, ना खाने के दौरान, ना खाने के बाद। ये जरा स्पष्ट कीजिए, क्या करना चाहिए?
1: इस सवाल का जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल है और मैं वही सोच रही हूँ कि सही अल्फाज क्या है इसके लिए, थोड़ा स्पष्टीकरण देने के लिए, क्योंकि ये सब विचारधारणा है। ये किसी किसी को आप अप्लाई कर सकते हो, हर किसी के लिए नहीं है। सीधी बात है, आपको पानी लगता है, आप पानी पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप खाने के पहले एक ग्लास पानी पियोगे, क्या हो जाएगा, आपके खाने पे असर पड़ेगा,
0: भूख कम हो जाएगी।
1: आपकी भूख कम तो हो जाएगी, मगर ऐसा भी हो सकता है आप कम भूख के कारण खाने की कोई विशिष्ट चीज जो आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है, आप उसी को निकाल दो।
0: जी जी,
1: जैसे भूख कम हो गई तो आपने रोटी सब्जी कर ली, दाल छोड़ दी, तो आपको दिक्कत देगा। अगर आप कर रहे हो तो उसके पीछे का शास्त्र समझ लो कि आप पानी पी रहे हो ताकि आपकी थोड़ी भूख कम हो जाए, मगर ऐसा करने के बाद अगर आपको 4 बजे बड़ी जोर की भूख लग रही है तो फिर क्या ही फायदा उस चीज का।
0: बिल्कुल,
1: वैसे ही आप पानी आधा घंटे पहले मत पियो, आधा घंटे बाद मत पियो, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। पानी किसको संभाल के पीना चाहिए? कुछ लोग जो होते हैं ना, जो खाना खाने के वक्त पे कम चबाते हैं या उनको चबाना पसंद नहीं आता, तो ऐसे लोग जो है थोड़ा चबा लेते हैं खाना, बाकी पानी पी के उसको थोड़ा सा गटक लेते हैं। मुझे उसका सही अल्फाज नहीं पता, बट उसको पूरा स्वॉलो कर लेते हैं।
0: जी जी जी।
1: तब आपकी खाने की मात्रा बहुत कम हो जाती है और आप पानी से ही आपके खाने को अंदर ढकेल रहे हो, तो ये आपको तकलीफ देगा और बहुत ज्यादा तकलीफ देगा। आपके डाइजेशन के हिसाब से भी तकलीफ देगा और आपको भूख के हिसाब से भी तकलीफ देगा। ऐसे वक्त पे आपको ध्यान देना चाहिए। तो अगर आप थोड़ा सिप सिप करके पानी पी रहे, घूट घूट लेके पानी पी रहे खाने के दौर में, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
0: जी बिल्कुल। और एक सवाल और है, वो ये कि एक वक्त में दो अनाज खाएं, एक अनाज, जैसे कि या तो दाल चावल खाएं या फिर रोटी सब्जी खाएं, रोटी सब्जी शाम को खा लें, दिन में दाल चावल खा लें, ऐसा लोग बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पूरी थाली, जैसे पुराने जमाने में पूरी थाली सजा के खाई जाती थी, तो आपका क्या कहना है
1: इसमें? सीधी सी बात है, धान धान होता है, आपको आखिर में देखना है धान की मात्रा आपकी थाली में कितनी है। आप अगर रोटी भी कर रहे हैं और चावल भी कर रहे हैं और आपकी आधी थाली उसी से भर रही है, तो उसमें दिक्कत है। हमने क्या बात की थी कि थाली में 1/4 धान होना चाहिए, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि आप रोटी सब्जी अलग करें, दाल चावल अलग करें या साथ में करें। प्रॉब्लम ये आती है या दिक्कत ये आती है जब आप उसका प्रमाण बदल देते हो। अगर आपकी थाली में रोटी सब्जी है मगर आप सब्जी को अचार की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, और दाल चावल है मगर आप दाल को अचार की तरह इस्तेमाल कर रहे हो कम मात्रा में,
0: जी जी,
1: तब आपकी थाली का संतुलन बदल जाता है। और 90% लोगों का यही इशू होता है कि उनकी थाली में आधे से ज्यादा धान होता है, एक छोटी मात्रा में सब्जी होती है और बहुत कम मात्रा में प्रोटीन होता है।
0: जी, खाने का सही तरीका बहुत जरूरी है, और जिसको पित्त की समस्या, एसिडिटी की समस्या हो, तो उसे तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत गलत फहमी है लोगों में कि कब क्या खाएं, दो भोजन के बीच में कितना गैप होना चाहिए।
1: इसका कोई एक सरल फॉर्मूला तो है नहीं, क्योंकि हर इंसान अलग होता है। किसी किसी को दिन में 3 बार खाने की आदत होती है, किसी को 5 बार खाने की आदत होती है। मुझे ऐसे लगता है, और मैं हमेशा पेशेंट्स को भी यही बताती हूँ, कि आपकी जो जिंदगी है, आपका जो रूटीन सेट है, आप उस तरीके से काम करो। अगर आप 3 बार खाते हो, 3 बार खा लीजिए, मगर ये देखिए कि वो आहार संतुलित हो। अगर हम बात करें भूख की, दिक्कत ये है शहर में आजकल लोगों को यही समझ नहीं आता भूख कब लग रही है और प्यास कब लग रही है। बस 1 बज गया है तो अभी लंच करने जाना है, ये समझ में आता है। तो सबसे पहले आपको अपने शरीर को समझना जरूरी है कि मुझे भूख कब लग रही है, मुझे प्यास कब लग रही है।
0: तो क्या जब भूख लगे तभी खाना चाहिए?
1: ऐसा जरूरी नहीं है, शरीर को जरूरत है उसकी समझे और आप अपना रूटीन सेट करें उस हिसाब से। अब मैं ये कहूंगी, पहले तो रूटीन सेट करिए और उस वक्त पे आपके बॉडी को ट्रेन करिए कि आपको उस वक्त पे भूख लगे, मगर भूख लगना उस वक्त पे जरूरी है। बस 1 बजा है इसके लिए मुझे खाना है, ये नहीं होना चाहिए। मुझे 1 बजे भूख लगनी चाहिए क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, ये होना चाहिए। जब आपको भूख लगेगी, वही अनाज वही थाली आपको अच्छे से, शरीर आपका उसको एब्जॉर्ब करेगा। आपके 2 खाने के बीच में कितना गैप होना चाहिए, ये

0: निर्भर करता है आप कितनी मात्रा में खाते हो। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग क्वांटिटी में ज्यादा खाते हैं, खाने की मात्रा उनकी ज्यादा होती है, और कुछ लोग होते हैं जो एक वक्त पे एक रोटी या दो रोटी के ऊपर नहीं खा सकते। जो कम खाते हैं उनको कई बार थोड़े थोड़े अंतर पे खाना जरूरी है, तो 2-3 घंटे के अंतर पे आप थोड़ा थोड़ा खा लेंगे अच्छा रहता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपकी खाने की मात्रा ज्यादा है तो आप दिन में 3 बार खा लोगे आप ठीक रहोगे। अगर आपको जैसे एसिडिटी या गैस की दिक्कत है तो आपको थोड़ा थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। आपको ब्लड शुगर की इश्यू है तब भी आपको थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए ताकि आपका शुगर स्टेबल रहे। अगर आप दिन में 3 बार खा रहे हो जस्ट इसलिए कि अभी ट्रेंड चल रहा है दिन में 1 बार खाने का, आप डायरेक्टली 3 से 1 पर आ गए, वो दिक्कत करेगा।
1: जी जी, अभी 2 टाइम का भी
0: बहुत ज्यादा
1: कि सिर्फ 2 टाइम खाना खा रहा है। यहाँ पर एक जरूरी बात जहन में आई है वो ये कि कई बार लोग एक साथ खाना खाने बैठते हैं तो सलाद भी रख लिया, दही भी रख लिया, फल भी रख लिया काट के, और पूरी थाली भी। तो क्या फल और खाना एक साथ खाना चाहिए या उसे बीच में गैप देना चाहिए?
0: हमेशा मुझे ऐसे लगता है कि फल ऐसी चीज है जो हमारे पूरे खाने में हम उसे बिना पकाए खाते हैं।
1: जी जी,
0: तो उसे ऐसे वक्त पे खाएं जहां आप उसका मजा अलग से ले पाए।
1: जी,
0: जहां पका हुआ खाना जा रहा है वहां पे वो होना चाहिए। सलाद आपके खाने में जा सकता है, वो कच्चा होता है, मगर सलाद हर किसी को सूट करता है ऐसे नहीं है। इसका मतलब कच्चा खाना सबके लिए है नहीं।
1: जी जी बिल्कुल,
0: आपकी सेहत के हिसाब से, आपके पेट कैसा काम कर रहा है उस हिसाब से आपका सलाद पका हुआ हो या कच्चा होना चाहिए ये देखना आपको जरूरी होता है। फल आपको हमेशा अलग से ही खाने होते हैं, और कभी भी फल के साथ आपके नट्स जाने चाहिए। अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल ले लें कि नॉर्मली लोग 8-9 बजे नाश्ता कर लेते हैं, 1 बजे खाना खाते हैं, और जो रात का खाना होता है वो अक्सर 8-9-10 बजे चला जाता है, तो आपके दोपहर के खाने और रात के खाने में बहुत बड़ी गैप हो जाती है। तो ऐसे वक्त पे इसके बीच में वहां पे फल और आपका जो नट्स है वो बहुत आसानी से इस्तेमाल हो सकता है। अभी आपको ये भी देखना है कि 5 से 7 के बीच में ही आपको समोसे चाट की जरूरत पड़ती है, तो वो भूख लगने के पहले और आपके दोस्त आपको बताने के पहले कि चलो हम जाके समोसा खाते हैं, उस वक्त पे आपका फल और नट्स खा लीजिए और आपकी सेहत बढ़िया रहेगी।
1: जी जी, एक गाना सुने?
0: जी,
1: कौन सा?
0: क्यों ना ये जीवन है पिया का घर।
1: जी, इस जीवन का यही है रंग रूप।

0: और कुछ लोगों का ये भी मानना है रोटी के मामले में कि गेहूं की रोटी नहीं पचती है, देर से पचती है, और मोटा अनाज ज्वार बाजरा और नाचनी, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए।
1: अगर हम गेहूं की बात करें, एक ट्रेंड चल रहा है जहां पे लोग बोलते हैं कि गेहूं बहुत बुरा है। गेहूं हर किसी के लिए बुरा नहीं है। अगर आपको एलर्जीज हैं या आईबीएस आईबीडी जैसे कोई मेडिकल कंडीशन है, तब आपको, या आप गेहूं जब भी खाते हो आपको थोड़ी बहुत डाइजेशन की इश्यू होती है, गैस की इश्यू होती है, तब गेहूं दिक्कत दे रहा है आपको, और तब आपको उसको अवॉइड करना चाहिए।
0: तो वहां
1: मतलब
0: पर
1: आपकी थाली में गेहूं नहीं होना चाहिए या कम मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि वो आपको तकलीफ दे रहा है। बाकियों को गेहूं से दूर रहने की कोई जरूरत नहीं है। कि आप गेहूं कौन से तरीके का यूज कर रहे हो ये देखिए।
0: जी।
1: जिसमें आपके पास खपली गेहूं है जो सबसे बेहतर है, उसके बाद आपके पास अलग अलग तरीके के गेहूं हैं, आप कौन सी वैरायटी यूज कर रहे हो ये भी देखिए। और उसमें आप जो गेहूं के ऊपर का छिलका होता है, ब्रान होता है, वो इस्तेमाल कर रहे हो कि नहीं खाने में, रोटी में, ये देखिए, आप सही रहोगे। रोटी गलत नहीं है, रोटी हर किसी को तकलीफ देती है ऐसा भी नहीं है। अगर हम ज्वार बाजरा की बात करें, मिलेट्स बहुत ज्यादा चर्चा में है एक दो
0: बिल्कुल
1: सालों से, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो मिलेट्स हम पहले से ही इस्तेमाल कर रहे हैं अपने देश में, आज उसकी मात्रा बहुत बढ़ गई है, मगर लोगों को उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना आज भी नहीं आता। ये जो मिलेट है या मोटे अनाज है, ये बहुत बार आप देखोगे थोड़े सूखे या ड्राई टेंडेंसी के होते हैं। ये कम खाएंगे तब भी आपको एकदम ऐसे लगेगा कि भरा भरा पेट लग रहा है, या पेट बहुत टाइट हो रहा है, या आप और एक ज्वार की रोटी के ऊपर नहीं खा सकते। अच्छे हैं मगर वो भी सही मात्रा में आपके दिन में होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको थायराइड जैसा इश्यू हो और आप पूरी तरीके से मिलेट्स पे रह जाए, आपको दिक्कत होगी। तो एक संतुलन गेहूं और मिलेट्स के बीच में रखना, चावल के बीच में रखना बहुत जरूरी है। अगर आपने वो संतुलन जमा लिया तो आपका पेट सही रहेगा। दूसरी चीज मुझे ये हमेशा दिखती है कि कुछ लोग जो होते हैं ना, आंकड़ों के पीछे पड़े रहते हैं। इसका
0: जी
1: मतलब क्या होता है कि उनके प्लेट में उनको या थाली में उनको दो रोटी चाहिए होती है, उनको फर्क नहीं पड़ता कि वो गेहूं की है, ज्वार की है, बाजरा की है। अभी ये दिक्कत है कि एक फुल्का या एक रोटी जो है 20 से 30 ग्राम आटे की बनती है, और एक ज्वार की रोटी जो है 50 से 60 ग्राम आटे की बनती है।
0: बिल्कुल
1: तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपने ज्वार बाजरा जो भी है वो बहुत ज्यादा मात्रा में खा लिया, जहां कि आप रोटी एकदम हल्के फुल्के में काम चला लेते हैं।
0: तो पाचन पर असर पड़ेगा।
1: जी, तो ये लोग सोचते ही नहीं है, क्योंकि ये उन्होंने कभी उस तरीके से सोचा ही नहीं है। तो ये आपको देखना जरूरी है कि आपकी पाचन क्रिया कैसी है, आपका पेट कैसा है, क्या आप मिलेट्स को डाइजेस्ट कर पा रहे हो, और अगर आप मिलेट्स को आपके खाने में, रोजमर्रा की जिंदगी में इंट्रोड्यूस करना चाहते हो या डालना चाहते हो, आप किस तरीके से डाल रहे हो।
0: जी,
1: आप अगर मिलेट्स बिल्कुल भी नहीं खा रहे तो तुरंत से पूरे हफ्ते मिलेट्स ना करें, हफ्ते में एक दो बार करें, फिर तीन चार बार करें, धीरे धीरे मिलेट्स की आदत लगाएं। और

0: ज्वार बाजरा नाचनी के आगे भी हमारे पास धान है, उसका
1: जी
0: भी इस्तेमाल करें, जैसे कोड़ो हो गया, कांग हो गया, पोरसो हो गया, महाराष्ट्र में वरी हो गया, ये सारे भी तो धान हैं, वो भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। सूडो मिलेट्स हैं जैसे कि किनवा हो गया, कुट्टू हो गया, बकवीट जिसे बोला जाता है। किनवा को तो हिंदी मराठी नाम है नहीं, किनवा को किनवा ही बोलते हैं।
1: सावा
0: नहीं, सामा है जो कि होता है महाराष्ट्र में वरी, बार्नयार्ड मिलेट।
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: ये सारी चीजें भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। हमें सिर्फ रोटी और उसके आगे ज्वार बाजरा नाचने की जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत कुछ है, हमें बस कुछ चीजें पता नहीं है और कुछ चीजें हमें इस्तेमाल करनी नहीं आती। तो आप सही तरीका सीख लो तो हो जाएगा। जब भी आप मोटे धान की बात करें और आप अगर अक्खा धान यूज कर रहे हैं तो उसको अच्छे से 4 से 6 घंटे भिगो के रखना बहुत जरूरी है, और सही मात्रा में पानी डाल के उसको पकाना बहुत जरूरी है। उसके साथ आप किस तरीके की सब्जी खा रहे हो, अगर आप मोटा धान इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके साथ जो सब्जियों में पानी का अंश ज्यादा होता है, जैसे दूधी हो गया, कद्दू हो गया, पेठा हो गया, इसका इस्तेमाल ज्यादा करें, तो वो आपका सूखी रोटी और उसके साथ गीली सब्जी, ये थोड़ा सा बैलेंस आपके पेट के लिए बहुत अच्छा ठहरता है।
1: अच्छा, क्या बात है।
0: तो ये थोड़ा संतुलन आपको समझना चाहिए और आपको धीरे धीरे अपने खाने को उस तरीके से बदलना जरूरी है।
1: एक गाना सुने
0: जी,
1: कौन सा
0: आप भी बता दीजिए कोई गाना।
1: सुनते हैं ये गाना।
0: एक

0: जो आप धान की बात कर रही थी, धान में ये सारी चीजें आती हैं। धान में सिर्फ वो चावल जो हम रोज खाते हैं वो नहीं, हाँ। बल्कि ये कोदो और जो नाम
1: बहुत ज्यादा है। और आप अगर चावल की ही बात करें तो भारत ऐसा देश है जहाँ हमारे पास 150-200 तरीके के चावल है।
0: बिल्कुल,
1: मगर हम एक ही चीज जानते हैं,
0: खुशबूदार
1: सफेद चावल।
0: बिल्कुल,
1: खुशबूदार चावल, बासमती चावल, इतना ही जानते हैं। थोड़ा हमारे जो चावल के अनाज है जो हमारे पास है, जैसे अंबे मोहर है, मट्टा है केरला का, या असम का ब्लैक राइस है, जो आपके यहाँ है, या कृष्ण कमोद है, आप वो चावल का इस्तेमाल करें। ब्राउन राइस आता है, मगर उससे अच्छा हमारे पास बहुत सारे चावल है।

0: पॉलिश्ड वैरायटी का चावल इस्तेमाल करें या सेमी पॉलिश्ड वैरायटी इस्तेमाल करें। बहुत खुशबूदार, बहुत फ्लेवरफुल चावल आते हैं हमारे पास। सफेद चावल में कोई भी न्यूट्रिशन नहीं रहता है। अच्छा। उसका सब कुछ निकाला हुआ होता है, बस हल्का सा बी विटामिन आपको मिल जाएगा, बाकी सब वो स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट है।
1: क्या बात है, बहुत सही जानकारी आपने दी है। पहले ग्रामीण इलाकों में आज भी
0: वही
1: धान को उबाल कर चावल बनाया जाता है, वो उसको उसना चावल कहते हैं।
0: हाँ, हमारे यहाँ उकड़ा तांदूल बोलते हैं। हाँ। महाराष्ट्र में जहाँ हम वही राइस को यूज करते
1: जी,
0: हैं
1: जी, जी।
0: जिसमें अच्छा ब्रान भी होता है, वाइटामिन भी होते हैं। हाँ। वो मोटा होता है तो आप कम भी खाते हो।
1: अदिति जी, बहुत जरूरी मुद्दा है आजकल तेल के बारे में कि पुराने जमाने में तो हम सबको याद है कि सरसों का तेल सब्जियों में इस्तेमाल होता था और कुछ जगहों पर नारियल का तेल, साउथ में खासतौर से अलग अलग जगहों पर। और आजकल तरह तरह के तेल हैं, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, सनफ्लावर, राइस ब्रॉन। तो बताइए कि कौन सा तेल सब्जियों के लिए सही होता है इस्तेमाल करना।
0: आप जिस जगह रहते हो उस जगह आपके आजू बाजू में कौन से पेड़ ज्यादा है, उस हिसाब से उस इलाके में वो तेल ज्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे आप नॉर्थ ईस्ट की बारे में बात करें तो वहाँ पे आपको सरसों का इस्तेमाल ज्यादा मिलेगा। महाराष्ट्र की बात करें या साउथ की बात करें तो नारियल का तेल ज्यादा मिलेगा। आज ग्लोबलाइजेशन का जमाना है तो ये सारे तेल अभी हम सबको मिल रहे हैं। कोई तेल बुरा हम नहीं बोल सकते, हर तेल अपने तरीके से सही है। किसी के लिए वो अच्छा हो सकता है, किसी के लिए वो बुरा हो सकता है। मुख्य क्या होता है कि आपके खाने में तेल की मात्रा कितनी है। आप अगर आपके खाने में, जैसे एक इंसान को पूरे दिन में तेल की मात्रा 3 से 4 चम्मच रखनी चाहिए।
1: ओहो,
0: छोटे चम्मच, 5 ml के चम्मच, उसके ऊपर नहीं
1: जी।
0: मगर हम कभी गिन के थोड़ी ना तेल इस्तेमाल करते, अंदाजे से। भिंडी की सब्जी को थोड़ा ज्यादा तेल डाल दिया, कोई पत्ते की सब्जी है तो उसमें कम तेल डाल दिया। हम स्वाद अनुसार तेल इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। अगर हम तेलों की बात करें कि कौन सा सबसे अच्छा होता है, सबसे पहले आप देखिए कि आपको मेडिकल इश्यूज है या नहीं। कुछ मेडिकल इश्यूज में कुछ तेल हम मना कर देते हैं, बाकी केस में अगर आपको कोई इश्यूज नहीं है, आप सेहतमंद है, आपको बस आपके तबियत का ख्याल रखना है, तो इसका सिंपल तरीका यह है कि आप पारंपरिक तौर से आप जो तेल खा रहे हो उसका इस्तेमाल करें, बाकी तेल भी अपने रूटीन में रखें, उसको थोड़ा सा साइकिल करें। मतलब अगर एक महीना आप सरसों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा सा फिर राइस ब्रान को लेकर आए, फिर आप सरसों पे चले जाए, फिर सनफ्लावर का इस्तेमाल करें। इससे थोड़े आप बदलाव लेकर आ सकते हैं। आखिर में आपकी तेल की मात्रा कितनी है ये मायने रखता है
1: जी।
0: कुछ तेल होते हैं जिनको बहुत बुरा नाम पड़ा है, जैसे पाम ऑयल है, क्योंकि ये ज्यादा करके पैकेज फूड, बेकरी आइटम्स में इस्तेमाल किया जाता है। तो हाँ, ये बुरा है क्योंकि उसकी जो गुणधर्म है वो आपको तकलीफ दे सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप पैकेज फूड और प्रोसेस फूड कितना खा रहे हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: आखिर में गिन के आप पूरे दिन में तेल कितना खा रहे हो। और तेल भी दो तरीके से हम देखते हैं, नॉर्मल लोग सिर्फ तेल को गिनते हैं, हम डाइटिशियंस दो तरीके से देखेंगे। विजिबल सोर्सेस जो कि दिखते हैं, मतलब आपका तेल, घी, बटर, चीज, और दूसरा होता है इनविजिबल सोर्सेस, मतलब दूध में से आने वाला फैट, आपके नट्स में से आने वाला फैट, ये भी तो जरूरी है
1: जी जी।
0: तो अगर आप पूरे दिन में 2 मुट्ठी ड्राई फ्रूट ही खा रहे हैं और आपकी सब्जी तेल में तैर रही है,
1: बिल्कुल,
0: तो आप ज्यादा तेल खा रहे हो, आपको तकलीफ होने ही वाली है। आखिर में तेल की मात्रा कितनी है वो ज्यादा मायने रखती है, और अपने तेल को बदलते रहिए। कौन सा तेल अच्छा है, क्या केमिकली रिफाइंड तेल अच्छा है, फिजिकली रिफाइंड अच्छा है, वुड प्रेस्ड अच्छा है, कोल्ड प्रेस अच्छा है, तो फिजिकली रिफाइंड या घानी, वुड प्रेस, कोल्ड प्रेस, ये अच्छे हैं। जितना हो सके केमिकल जो फिल्टर्ड होता है वो थोड़ा सा दूर रखें। अगर शहर में रह रहे हैं या आपको दिक्कत है, आपको एक्सेसिबिलिटी या फाइनेंस का इशू है, तो आप जो भी तेल मिल रहा है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको फाइनेंशियली अफोर्डेबल है तो घानी का तेल, कोल्ड प्रेस ऑयल, वुड प्रेस ऑयल, इसकी तरफ थोड़ा सा मुड़ जाइए। वो तेल थोड़ा सा गाढ़ा भी होता है, तबियत के लिए भी अच्छा होता है, और उसमें गुणधर्म भी अच्छे खासे होते हैं
1: जी,
0: तो
1: जी,
0: वो
1: जी।
0: इस्तेमाल आप कर सकते हो
1: जी। बिल्कुल, घानी का तेल यानी

0: और घी के बारे में भी बताइए। घी के बारे में भी बहुत सारी भ्रांतियां, लोग चुपड़ के घी खाते हैं कुछ लोग कहते हैं कि अरे इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, घी खाते ही नहीं, तो घी क्या है बताइए।
1: घी भी फैट का एक ही रूप है, आप तेल खाओ, घी खाओ, बटर खाओ, चीज खाओ, उसके रूप अनेक है।
0: अच्छा।
1: आखिर में मात्रा आपकी मैटर करती है, जो कि मैंने आपको बताया कुछ देर पहले कि दिन में आपकी 3 से 4 चम्मच तेल होना चाहिए, उसमें घी भी आता है। आप 4 चम्मच घी इस्तेमाल करना चाहते हो या उसमें से 1 चम्मच घी इस्तेमाल करना चाहते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। क्या घी खाने से फायदा है? हाँ, पेट के लिए अच्छा है, तबीयत के लिए अच्छा है, आप वेट गेन करने की कोशिश कर रहे हो तब भी आपको फायदेमंद ठहरेगा। अगर आपको ब्लॉकेज इश्यूज है, हार्ट इश्यूज है, या आपको कोई मेडिकल बाकी के कंडीशन है, तो आपको घी को थोड़ा कंट्रोल में रखना जरूरी है। अगर आप घी नहीं खाते हो, क्या आपको कोई नुकसान है? नहीं, बिना घी खाए भी आप अच्छे खासी जिंदगी निकाल सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको घी खाना जरूरी है जिंदगी में। तो आखिर में आप कितनी मात्रा में खा रहे हो, ये महत्वपूर्ण है।
0: जला हुआ घी नहीं खाना चाहिए।

0: के रूप में,
1: जी
0: पूरी और पराठे के रूप
1: बहुत
0: ज्यादा। अदिति जी, घी तेल सब कुछ शामिल हो गया और हर खाने में मिठाई भी शामिल होता है। कुछ लोगों के साथ तो ये दिक्कत है कि हर खाने के बाद उनको मीठा चाहिए, तलब होती है। तो ये मिठाई के खाने के बारे में बताइए कि खाने के बाद, खाने के साथ खाना जरूरी है, खाने से पहले या बाद में, या नहीं खाना चाहिए?
1: अगर आप मिठाई खाएंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको मिठाई की जरूरत नहीं है। शक्कर कम खाने से आपकी शक्कर कम नहीं होने वाली। मिठाई भी शक्कर का ही एक अलग रूप है जिसे हम कार्बोहाइड्रेट ही कहते हैं। अगर आपके पूरे दिन में आपके आहार में कार्बोहाइड्रेट का प्रमाण बहुत ज्यादा है तो मिठाई उसे और बढ़ाएगा। और मिठाई जो है छोटा बम बड़ा धमाका है,
0: तो
1: छोटे से बाइट में बहुत ज्यादा कैलोरीज होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा फैट भी होता है और उतनी ज्यादा आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाते हैं। तो क्या मिठाई जरूरी है? नहीं। अगर आप मिठाई हर खाने के बाद खाना चाहते हो तो ये आपको कम करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से, आपकी तबीयत के हिसाब से। तो एकदम से अचानक से अगर आप

0: होता है, छोटे से बाइट में बहुत ज्यादा कैलोरीज होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा फैट भी होता है और उतनी ज्यादा आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाते हैं। तो क्या मिठाई जरूरी है? नहीं। अगर आप मिठाई हर खाने के बाद खाना चाहते हो तो ये आपको कम करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से, आपकी तबीयत के हिसाब से। तो एकदम से अचानक से अगर आप बंद नहीं करना चाहते, पहले तो दिन में एक ही बार कर लीजिए और फिर उसी मिठाई के थोड़े से हेल्दी रूप थोड़े से देख लीजिए। जैसे आपको खजूर मिल जाएगा, या आपने थोड़ा चना और गुड़ ले लिया, या आपने छोटा चिक्की चिक्की का टुकड़ा ले लिया, आप इसका इस्तेमाल करें, ना कि गुलाब जामुन या और कोई तली हुई मिठाई, मावा जलेबी, इसका इस्तेमाल करें। जैसे मैंने कहा, आखिर में पूरे दिन में आपने कार्बोहाइड्रेट कितने खाए हैं वो मायने रखता है। कुछ लोग जो है खाने में भी शक्कर और गुड़ का इस्तेमाल बहुत करते हैं, तो मतलब आप चाय में शक्कर गुड़ खा रहे हैं, आपके खाने में गुड़ और शक्कर जा रहा है, और फिर आपकी मिठाई में भी शक्कर है। तो आपने यहाँ फॉर्मूला बना लिया आपका ब्लड शुगर बढ़ाने का।
1: जी जी।
0: इससे आपका ब्लड शुगर बढ़ेगा क्योंकि आप हर जगह पे मिठाई खा रहे हो। अभी कुछ लोग बोलेंगे हमें तो ब्लड शुगर नहीं है, हम तो जिंदगी भर खा रहे। अच्छी बात है, हो गए, आपकी तबीयत उतनी अच्छी है, हो गया। मगर क्या ये हर कोई कर सकता है? नहीं, वो हर किसी को तकलीफ दे सकता है।
1: जी।
0: तो मिठाई भी आखिर में आपको ये देखनी है कि क्या ये मेरे को फायदा देने वाली है। आज के टाइम में हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी मिठाई आ रही है जो कि आपकी तबीयत को भी संभाल सकती है और मीठे की क्रेविंग को भी संभाल सकती है। जैसे डार्क चॉकलेट हो गया, या आप छेना इस्तेमाल करो, रसगुल्ले का छेना वो आप यूज करो,
1: खीर घर में बना के।
0: खीर भी आखिर में दूध और शक्कर ही आई, और उसमें अगर आपने साबुदाना डाल दिया तो खत्म। तो आपने एकदम एकदम ऐसा फॉर्मूला बना दिया जहाँ पे शुगर बढ़ जाएगा। तो ये कितने मात्रा में खा रहे, पूरे दिन में कितनी शक्कर गुड़ जा रही है, और ओवरऑल आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक कितना है, इस पे निर्भर करेगा कि क्या आप मिठाई खा सकते हो या नहीं। दूसरी चीज ये होती है कि बहुत ज्यादा मीठा खाने से ना, कुछ लोग कई सालों तक उनको आदत होती है मीठा मीठा खाने की, कार्बोहाइड्रेट खाने की, इसकी वजह से उनकी टेस्ट बड्स जो है ना वो भी थोड़े चेंज हो गए। उनको हर चीज उस तरीके से टेस्ट नहीं आती, तो जब वो मिठाई थोड़े दिन के लिए निकाल लेते हैं तब उनको वही मिठाई कितनी मीठी है वो पता चलेगी। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो मिठाई बिल्कुल नहीं खाते हैं, वो फटक से बोलेंगे आपकी एक चम्मच शक्कर भी बहुत ज्यादा है। वो क्यों बता पा रहे? क्योंकि उनके टेस्ट बड अभी वापस ट्रेन हो गए कि जो निसर्ग में जो चीजें जैसी है वो उनके फ्लेवर्स का मजा उस तरीके से ले ले। तो हमें उस चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है।
1: मतलब ये भी है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम खाना कम खा लें, मिठाई ज्यादा खा लें।
0: हाँ।
1: तो वो भी ठीक नहीं है।
0: ठीक नहीं है,
1: क्योंकि मीठा तत्व तो आपके हाँ। शरीर में जा रहा है जो
0: कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं तो सब कुछ कर रही हूँ, डाइट भी कर रही हूँ, मगर वेट लॉस नहीं हो रहा है या मेरी शक्कर कम नहीं हो रही है, तब भी अक्सर गुनहगार वो मिठाई ही होती है।
1: बिल्कुल। तो अब इस मिठाई के साथ ही मीठी मीठी बातों को हम विराम दे रहे हैं। अदिति जी, बड़ी ढेर सारी जानकारी आपने साझा की हमारे श्रोताओं के साथ। एक गाना सुने
0: जी।

पोषण माह के उपलक्ष्य में सेहतनामा कार्यक्रम में आज आपने सुना न्यूट्रिशन अर्थात पोषण। इस विषय पर आहार विशेषज्ञ और न्यूट्रिशनिस्ट अदिति प्रभु से ममता सिंह की बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी। इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोग मिला मंगेश सांगले से। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि सतत विकास ढांचे में चक्रीय अर्थव्यवस्था सिद्धांतों को समाहित करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पुनर्उपयोग, मरम्मत और संरक्षण की अपनी प्राचीन पद्धतियों को समकालीन नीतियों में आधुनिक रूप दिया है। उन्होंने ये बात गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच WCF 2026 के 10वें संस्करण के उद्घाटन समारोह में कही। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इसका संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ये सम्मेलन भारत में पहली बार आयोजित हो रहा है। 65 से अधिक देशों के 2000 से अधिक हितधारक इसमें भाग ले रहे हैं। इसका विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा उद्योगों के बीच साझेदारी भारत को रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। श्री सिंह ने नई दिल्ली में DRDO उद्योग सहभागिता सम्मेलन विमर्श 2026 को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि DRDO ने मिसाइल से लेकर रडार, लड़ाकू विमान से लेकर पनडुब्बियों और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी क्षमता साबित की है। श्री सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में रक्षा क्षेत्र में किए गए सुधार अभूतपूर्व हैं।
1: अभी पिछले कुछ वर्षों में हमने डिफेंस सेक्टर में जो रिफॉर्म्स देखे हैं, मैं कह सकता हूं कि वह अनप्रेसिडेंटेड है। हमारे प्रधानमंत्री के विजन और लीडरशिप में हमने कई गेम चेंजिंग फैसले लिए हैं, चाहे वो पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट हो, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हो, आईडेक्स हो, अदिति हो, या फिर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट का 25% प्राइवेट सेक्टर के लिए एलोकेशन का फैसला हो।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि संघर्षों और विरोधाभासों से जूझ रही दुनिया में नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता उल्लेखनीय है। भारतीय विश्व मामलों की परिषद ICWA के रजत जयंती समारोह में उन्होंने सर्वसम्मति से अपनाई गई नई दिल्ली घोषणा को बड़ी उपलब्धि बताया। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा कि भारत वैश्विक चुनौतियों पर अपने दृष्टिकोण को अधिक आत्मविश्वास के साथ व्यक्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश के हित तेजी से दुनिया भर से जुड़ रहे हैं और भारत से विश्व की अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं। सरकार ने कहा है कि बैंक 2000 रुपये तक के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI लेनदेन और रुपे डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने UPI लेनदेन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान तथा निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने रेजीनगर सीट से शाखाराव सरकार को उम्मीदवार बनाया है, जबकि नंदीग्राम विधानसभा सीट से हसीरानी रथ पार्टी के उम्मीदवार होंगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। ये प्राथमिकी बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद दर्ज की गई है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा विदेशी छात्रों और पत्रकारों के रहने की अवधि पर लगाई गई सख्त सीमाओं के नियम पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि इस नीति को लागू करने से अमेरिका की अर्थव्यवस्था और उच्च शिक्षा प्रणाली को भारी नुकसान हो सकता है। भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस लोक सेवा प्रसारक की शुरुआत 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत एक प्रायोगिक टेलीविजन सेवा के तौर पर हुई थी। भारत और अफगानिस्तान के बीच 2020 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक

कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर और साथियों का गाया हुआ, फिल्म का नाम है अमर ज्योति। इस गीत को पंडित भरत व्यास ने लिखा है और धुन बनाई है वसंत देसाई ने।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: लिखती है रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
2: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती है जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती है सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती है मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी। अम्बिका
0: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज है, फिल्म का नाम है चांद और सूरज। इसे शैलेंद्र ने लिखा है और धुन बनाई है सलील चौधरी ने।

आइए सुनते हैं खयाम साहब के संगीत निर्देशन में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत। गायिका हैं सुमन कल्याणपुर और फिल्म का नाम है मोहब्बत इसको कहते हैं।

0: उत्तम सिंह,
1: मुझको हुई ना खबर,
0: एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: यह आवाज थी मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम था भीगी रात। इसे मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा था और धुन बनाई थी रोशन ने।
1: उनका सफर शुरू हुआ था

0: उत्तम सिंह,
1: मुझको हुई ना खबर,
0: एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गड्डी ले
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। श्री सिंह ने नई दिल्ली में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन उद्योग सहभागिता सम्मेलन विमर्श 2026 को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री सिंह ने कहा कि DRDO तथा उद्योग के बीच साझेदारी भारत को रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
1: EDF के माध्यम से स्टार्टअप्स को ग्रांट्स दिए जा रहे हैं और अनेक टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन स्टेज तक पहुंच चुकी हैं। IDEX ने भी डिफेंस इनोवेशन के लिए एक नया इकोसिस्टम भी तैयार किया है, जहां स्टार्टअप्स हमारी वास्तविक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के आधार पर सॉल्यूशंस विकसित कर रहे हैं। अब DRDO और इंडस्ट्री की पार्टनरशिप केवल प्रोडक्शन तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। रिसर्च, डिजाइन, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग की पूरी वैल्यू चेन में साझेदारी हमें बढ़ानी होगी।
0: रक्षा मंत्री ने कहा कि DRDO ने मिसाइल से लेकर रडार, लड़ाकू विमान से लेकर पनडुब्बियों और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक हर क्षेत्र में अपनी क्षमता साबित की है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाऊ

देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल, केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय जल संसाधन सचिव और संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव भी उपस्थित थे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सतत विकास ढांचे में चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को समाहित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया है। गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच WCF 2026 के 10वें संस्करण के उद्घाटन में श्री यादव ने कहा कि विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, EPR विनियमों और मिशन लाइफ जैसी पहलें चक्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण कदम है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसका संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ये सम्मेलन भारत में पहली बार आयोजित हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि शिक्षा जीवन में सुधार लाने के सबसे बेहतर माध्यमों में से एक है। चेन्नई में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस समय पूरी दुनिया में अनिश्चितता का माहौल है। उन्होंने कहा कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में युद्ध जैसी स्थिति के कारण आर्थिक परिस्थितियां भी अस्थिर दिखाई दे रही हैं। हालांकि श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत और स्थिर गति से आगे बढ़ रही है तथा देश की आर्थिक वृद्धि दर 7.8% है। वित्त मंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में कई अंतर्राष्ट्रीय निवेश हुए हैं जो देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं। आज राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस हर साल 15 सितंबर को भारत के महानतम इंजीनियरों में से एक मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को राष्ट्र निर्माण का कर्मयोगी बताया। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि एम विश्वेश्वरैया एक इंजीनियरिंग प्रतिभा थे जिनकी राष्ट्र निर्माण की दूरदृष्टि नागरिकों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने भी एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा विदेशी छात्रों और पत्रकारों के रहने की अवधि पर लगाई गई सख्त सीमाओं के नियम पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि इस नीति को लागू करने से अमेरिका की अर्थव्यवस्था और उच्च शिक्षा प्रणाली को अधिक नुकसान हो सकता है। ट्रंप प्रशासन ने इस साल जुलाई में इस नियम को अंतिम रूप दिया था। भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस लोक सेवा प्रसारक की शुरुआत 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत एक प्रायोगिक टेलीविजन सेवा के तौर पर हुई थी। भारत और अफगानिस्तान के बीच 2020 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। पहले मैच में रविवार को भारत ने 7 विकेट से जीत हासिल की थी। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Defense Minister Rajnath Singh today said measures have been taken to ensure that India does not remain dependent on imports in the defense sector but moves towards self-reliance. He emphasized that self-reliance in the defense sector can be achieved through seamless collaboration among the defense forces, research and development institutions and the industry. He called for greater dialogue, co-development and co-production to accelerate technology adoption and strengthen India's defense manufacturing ecosystem. Addressing the DRDO Industry Synergy Meet, Vimarsh 2026 in New Delhi, Mr. Singh said DRDO has demonstrated its capabilities in every field from missiles to radars, combat aircraft to submarines, electronic warfare system to artificial intelligence.
1: अभी पिछले कुछ वर्षों में हमने डिफेंस सेक्टर में जो रिफॉर्म्स देखे हैं
2: द रिफॉर्म्स विटनेस्ड इन द डिफेंस सेक्टर ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स आर अनप्रेसिडेंटेड एंड सेवरल गेम चेंजिंग डिसीजंस हैव बीन टेकन दिस इंक्लूड द पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव आईडेक्स अदिति एंड द डिसीजन टू एलोकेट 25% ऑफ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट टू द प्राइवेट सेक्टर
1: और इसके परिणाम आप सबने महसूस भी किए हैं.
0: The Supreme Court today asked the center to consider extending the tenure of

0: आरती ही गीत तो बहुत ही सुंदर था और बहुत कम सुनने में आया है ये गीत,
1: बहुत प्यारा लगता है ना।
0: हाँ। अच्छा एक बात बताओ आरती, अगर तुम्हारे घर पर किसी जरूरी फैसले पर सबकी राय ली जाए तो क्या मानती हो तुम, वो लोकतंत्र है?
1: बिल्कुल लोकतंत्र माना जाएगा,
0: माना जाएगा।
1: मेरी नजर में तो माना जाएगा।
0: बिल्कुल, मतलब बात छोटी सी है लेकिन लोकतंत्र की जो भावना है हम समझते हैं इसे शुरू हो जाती है, है ना, सबकी बात सुनी जाए और फैसले में लोगों की भागीदारी भी हो। और यही वजह है कि हर साल हम 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाते हैं और ये दिन हमें ये भी याद दिलाता है आरती कि लोकतंत्र केवल चुनाव और मतदान तक सीमित नहीं होता, ये समानता, स्वतंत्रता, भागीदारी, संवाद और जिम्मेदारी की भावना से भी जुड़ा होता है।
1: बिल्कुल, इसको एक उदाहरण देके समझा सकते हैं लोकतंत्र को।
0: हाँ?
1: बहुत छोटा सा उदाहरण है।
0: हाँ?
1: आप शायद हंस भी पड़े इस पर कि सोचिए कक्षा में पिकनिक के लिए दो जगहों के नाम सामने आए, एक बच्चा बोला मुझे पहली जगह पसंद है और दूसरा बोला मुझे तो दूसरी जगह पसंद है।
0: ठीक है,
1: अगर शिक्षक जो है जो पढ़ा रहा है वो बिना किसी की बात सुने खुद ही फैसला दे दे कि तो ये भागीदारी वाली प्रक्रिया तो नहीं कही जाएगी।
0: बिल्कुल,
1: कि नहीं ना हमने उनकी सुनी ना उनकी सुनी, हमने तो अपना फैसला लागू कर दिया।
0: हाँ।
1: तो लेकिन अगर सबकी राय सुनी जाए और विकल्पों पर चर्चा हो और फिर उचित तरीके से निर्णय लिया जाए तो ये लोकतांत्रिक सोच का एक छोटा सा उदाहरण है। यानी सरल शब्दों में कहें तो मेरी आवाज महत्वपूर्ण है लेकिन आपकी आवाज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।
0: ये सबसे बड़ी बात है ना, कि हमारे विचार तो हमने थोप दिए किसी पर लेकिन सामने वाले के विचारों को देखा भी नहीं, लेकिन अगर आपने दोनों विचारों का सम्मान किया यही लोकतंत्र है।
1: बिल्कुल,
0: है ना।
1: बिल्कुल।
0: और मान लीजिए घर में आज तय होना है कि रात के खाने में क्या बनेगा, है ना, होता है ना भाई आज क्या बनाना है, तो पापा कहते हैं भाई आज तो पूरी सब्जी खाने का मन है।
1: हाँ।
0: और बच्चे कहते हैं नहीं नहीं नहीं हमें तो पिज्जा खाना है, हमें तो बर्गर खाना है। हाँ। है ना? लेकिन मम्मी कहती है कि आज तो खिचड़ी बनेगी,
1: हो गया फैसला।
0: ऐसे में क्या होता है कि वो लोकतंत्र खत्म हो जाता है।
1: बिल्कुल,
0: और असंतोष घर में
1: प्राप्त
0: हो जाता है, है ना।
1: बिल्कुल,
0: तो
1: जी, और लोकतंत्र हमें सिखाता है कि असहमत होना गलत नहीं है। गलत तब होता है जब हम दूसरे की बात सुनना ही बंद कर दें। तो लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि इसमें नागरिक केवल दर्शक नहीं होते बल्कि व्यवस्था में भागीदार होते हैं। यानी कि मम्मी को सबकी बात सुननी चाहिए। हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, सवाल पूछते हैं, अपनी राय रखते हैं और समाज के बेहतर भविष्य के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं।
0: बिल्कुल, और साथ ही हमेशा ये भी याद रखना चाहिए आरजी हमें कि अधिकारों के साथ साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं जिन्हें निभाते हुए लोकतंत्र का सम्मान किया जा सकता है। और अब मैं भी यहाँ सम्मान करूंगी लोकतंत्र का। आपसे पूछती हूँ कि एक अंतराल ले लें।
1: बिल्कुल, लिया जाए।

0: तो इस अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का फिर से हम स्वागत करते हैं
1: जी।
0: तो हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है, हमारे सखियों और सखाओं ने,
1: हमारे जो सखियां हैं, जो हमारे सखा लोग हैं, सभी कुछ बहुत सारी चीजें लिख रहे हैं। तो एक हमारे जो श्रोता हैं वो लिखते हैं कि इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2007 में हुई थी। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र के महत्व को बढ़ावा देना, लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करना है और इसी उद्देश्य से प्रतिवर्ष ये दिवस मनाया जाता है।
0: बिल्कुल, हमारे श्रोता ने लिखा है कि लोकतंत्र में जनता की सरकार जनता के द्वारा और जनता के हित के लिए बनाई जाती है और लोकतंत्र का यही एक मौलिक पहलू भी है। ऐसे में लोकतंत्र के परिवर्धन और संवर्धन का ये आज का अंतर्राष्ट्रीय दिवस खास मायने रखता है और इसीलिए इसे मनाया भी जाता है।
1: बिल्कुल, और साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र केवल मतदान का अधिकार नहीं बल्कि समानता, स्वतंत्रता, सहिष्णुता और अपनी बात कहने के अधिकार का सम्मान भी है। सच्चा लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब हम दूसरों के विचारों का सम्मान करते हुए अपने कर्तव्यों को भी ईमानदारी से निभाते हैं।
0: बिल्कुल, वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2007 में एक प्रस्ताव पारित करके इस दिन की शुरुआत कर दी थी और इसका उद्देश्य दुनिया भर में लोकतंत्र के सिद्धांतों, मूल्यों और स्थिति की समीक्षा करना और इसे मजबूत करना है। यानी जब हर आवाज मायने रखती है तो लोकतंत्र बेहतर परिणाम देता है और ये खास आज के दिन मनाया जाता है।
1: बिल्कुल,
0: है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2007 में हुई और इस दिवस का मुख्य उद्देश्य था लोकतंत्र के महत्व को बढ़ावा देना, लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना और इसी उद्देश्य से प्रतिवर्ष ये दिवस मनाया भी जाता है।
1: जी, तो इस समय लोकतंत्र क्या कहता है,
0: यही कि गीत सुन लिया जाए।
1: जी, बिल्कुल।

0: तो आरती, हमारी बहुत सारी सखियों ने, बहुत सारी महिलाओं ने ख्वाब को हकीकत का रंग भी दिया है,
1: बिल्कुल
0: है ना, और उसी में एक नाम है सुमिता घोष का।
1: जी, तो कहते हैं ना कि किसी के पास हुनर होना बड़ी बात है, लेकिन उस हुनर को सही पहचान और सही अवसर मिलना उससे भी बड़ी बात है। हमारे देश की गांवों में सदियों से महिलाएं खूबसूरत कढ़ाई करती आई हैं, हाथ करके एक पर बुनाई करती आई हैं, कढ़ाई करती आई हैं, और अपनी पारंपरिक कलाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाती आई हैं।
0: बिल्कुल आरती, सही कहा तुमने, लेकिन एक सवाल ये कि अक्सर इतने सुंदर काम को देखकर भी मन में आता है कि क्या इन हुनरमंद हाथों को उनके हुनर का उचित मूल्य मिल सकता है। बस इसी सवाल को अपने काम का आधार बनाया हमारी आज की सखी विशेष यानी सुमिता घोष ने।
1: जी, और सुमिता घोष का जन्म हुआ कोलकाता में और उन्होंने मुंबई से अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री हासिल की। बाद में उन्होंने अमेरिका के एक विश्वविद्यालय से कंफ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन में मास्टर डिग्री की उन्होंने हासिल की। और सुमिता का असली विश्वविद्यालय था उनका अपना देश, यानी कि अपना ग्रामीण भारत।
0: कितनी बड़ी बात है ना।
1: जी,
0: और एक लंबे समय तक सुमिता ने ग्रामीण राजस्थान में एक ट्रस्ट के साथ काम किया और उनका काम ग्रामीण विकास, समुदायों के सामाजिक आर्थिक विकास और विशेष रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ काम था, है ना।
1: और इस तरीके के जो लोग होते हैं ना, सच में जो ग्रामीण भारत को चुनते हैं, सच में वो कुछ कर गुजरने के लिए मन में पहले ही सोच के रखते,
0: ठान लेते हैं। मैं बताऊं, मैं एक ऐसी महिला से मिली थी जो एनएसडीएन थी और उन्होंने नागालैंड जाकर वहाँ के जो लोग थे उनको चुना कि मैं उनको एक्टिंग सिखाऊंगी।
1: अरे वाह।
0: जो वहाँ का जो ग्रामीण तबका था, जो अशिक्षित था, वहाँ जाकर उन्होंने एनएसडी पास आउट करने के बाद वहाँ स्थान चुना और वहाँ जाकर वो आज भी काम कर रही है।
1: बहुत बहुत बड़ी बात।
0: कितनी बड़ी बात है, जबकि हम एनएसडी से निकलकर सीधा मुंबई की शरण में आते हैं, है ना, और हम फिल्मों की तरफ आते हैं, लेकिन उन्होंने वो स्थान चुना जहाँ कोई जाना नहीं चाहता और उन लोगों की तरफ कोई देखना भी नहीं चाहता है, लेकिन उन्होंने वो स्थान चुना और वहाँ लोगों को कलाकारी से जोड़ा। तो ऐसे ही सुमिता घोष हैं जो कि वो सोच रही थी कि कैसी संस्थाएं होनी चाहिए जो समाज में जो असमानताएं हैं और अन्याय है उसे कम करने में हमारी मदद कर सकती
1: है। बिल्कुल। और ये सब सोचते हुए उनके मन में एक विचार आकार लेने लगा था कि गांव और शहर के बीच की दूरी को कम करना बहुत जरूरी है। किस तरह कारीगर और ग्राहक के बीच सीधा रिश्ता बनाया जाए, परंपरा को आधुनिक बाजार से कैसे जोड़ा जाए, यही विचार आगे चलकर रंग सूत्र बना। लेकिन विचार को हकीकत में बदलना आसान भी नहीं था।
0: बिल्कुल, इतना आसान तो नहीं होता है। जब भी कोई व्यवसाय शुरू करना हो तो सबसे पहले उसकी जो जरूरी चीज है वो क्या है, पैसा,
1: बिल्कुल,
0: पूंजी, है ना। और सुमिता घोष को भी पूंजी की जरूरत थी, लेकिन एक बड़ी समस्या सामने थी जो थी दान देने वाली संस्थाएं, और उन्हें इसलिए फंड नहीं करना चाहती थी क्योंकि रंगसूत्र एक चैरिटी नहीं बल्कि व्यवसाय के रूप में काम करने वाला सामाजिक उद्यम था।
1: बिल्कुल। और इसके अलावा बैंक भी ऋण देने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि पर्याप्त व्यवसायिक अनुभव और ऋण के लिए जरूरी चीजें उपलब्ध नहीं थी उनके पास। सुमिता के मन में यही बात चल रही थी कि अब क्या किया जाए। तभी उन्हें एक ख्याल आया, अगर इन्हीं कारीगरों के हुनर से ये संस्था बनेगी तो क्यों ना वो इसके मालिक भी बन जाए।
0: कितनी बड़ी बात उनके दिमाग में आई जो कि हर एक के दिमाग में नहीं आती
1: क्योंकि
0: है।
1: अपना तो सब सोचते हैं कि हम अपना व्यवसाय खड़ा कर लें, लेकिन जो हमारे साथ काम करने वाले हैं उनको, उनके लिए सोचकर इतनी बड़ी बात सोचना बहुत बड़ी।
0: बिल्कुल। और कि वही मालिक भी बने, हम क्या सोचते हैं काम तो हम शुरू कर दें, मालिक भी हम बन जाए।
1: जी,
0: है ना, हमारे विचार में यही रहता है ना ज्यादातर कि मालिकाना हक जो है हम पाना चाहते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ कि राजस्थान के लगभग 1000 कारीगरों ने आगे बढ़कर कंपनी में 1,000 रुपए का निवेश किया, यानी शुरुआत हुई।

0: कारीगरों की अपनी भागीदारी से। और ये केवल पैसा जुटाने का तरीका नहीं था बल्कि एक सोच थी कि कारीगर सिर्फ काम करने वाला व्यक्ति नहीं है बल्कि व्यवसाय का भागीदार भी हो सकता है।
1: बिल्कुल, एक बहुत अच्छी शुरुआत करी थी। और यही रंगसूत्र की सबसे खास पहचान बनी। रंगसूत्र की यात्रा पहले 2004 में एक उत्पादक कंपनी के रूप में शुरू हुई और फिर 2006 को क्राफ्ट्स इंडिया के रूप में पंजीकृत हुई। और रंगसूत्र का उद्देश्य था कि ग्रामीण कारीगरों को नियमित काम और टिकाऊ आजीविका से जोड़ना, साथ ही उनके पारंपरिक कौशल को भारत और दुनिया के बाजारों तक पहुंचाना।
0: सबसे बड़ी बात ये थी। और यहाँ बात केवल आरती हस्तशिल्प बेचने की नहीं थी, बात थी हुनर, बाजार, सम्मान और स्वामित्व, इन सभी को एक साथ लाने की। और रंगसूत्र से जुड़े कारीगरों में बड़ी संख्या महिलाओं की थी, तो नीति आयोग के अनुसार रंगसूत्र में 2000 से अधिक कारीगर शेयर होल्डर रहे और लगभग 80% कारीगर महिलाएं हैं। तो कारीगरों की भूमिका सह मालिक, सह निर्माता, प्रबंधक और बोर्ड सदस्य के रूप में भी वहां पर रही है।
1: बिल्कुल, और यानी जो महिलाएं, उनके हाथ में सिर्फ सुई और धागा नहीं आया बल्कि साथ में उनके हाथ में निर्णय लेने की ताकत भी आई।
0: बिल्कुल,
1: और सुमिता घोष के रंगसूत्र पर लिखे एक लेख में एक महिला कारीगर के अनुभव को बताया गया है कि कंपनी के शेयर उसके नाम की उन संपत्तियों में शामिल थे जिन पर उसका अपना अधिकार था। अपनी कमाई से उसके पास अपने बैंक खाते और खर्च के बारे में निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी आई थी।
0: और यही वो बदलाव था जिसे सुमिता घोष सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानती थी। रंगसूत्र ने पारंपरिक कढ़ाई, हथकरघा और अन्य हस्तशिल्प कौशल को आधुनिक बाजार की जरूरतों से जोड़ने का काम किया और इसका उद्देश्य था ग्रामीण कारीगर केवल स्थानीय बाजार तक सीमित नहीं रहे बल्कि बड़े ग्राहकों और वैश्विक बाजारों तक इनकी पहुंच बन सके।
1: बिल्कुल, और रंगसूत्र ने बड़े बाजार भागीदारों के साथ में काम किया है। इस तरह एक गांव में बैठा कारीगर अपने हाथों से तैयार किए गए उत्पाद को दुनिया के दूसरे हिस्से के ग्राहक तक पहुंचते हुए देख सकता था। सुमिता घोष के काम को राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली। 2016 में उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें ग्रामीण कारीगरों और महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े उनके कामों के लिए मिला था।
0: बिल्कुल सही कहा। तो एक तरफ गांव की कच्ची गलियां, दूसरी तरफ दुनिया का बड़ा बाजार, इन दोनों के बीच एक पुल बनाने की जो कोशिश, या यूं कहें बहुत बड़ी कोशिश, बहुत बड़ा काम सुमिता घोष ने किया, उस पुल का नाम क्या है?
1: रंगसूत्र।
0: और सुमिता घोष ने साबित किया कि अगर किसी महिला के हाथ में हुनर है तो उसे केवल काम नहीं, साथ में काम का उचित मूल्य, अपनी पहचान और अपने फैसलों की ताकत भी मिलनी चाहिए।
1: बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है ये।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि अगर आप किसी हुनर, आपके अंदर कोई हुनर है तो उसको तराशना बहुत जरूरी है, है ना। और उसको तराश के जब आप अपने लिए उसको उपयोग करते हैं ना, तो अपना ही नहीं, साथ में अपने परिवार का, अपने साथ में जितने भी जुड़े हुए लोग हैं या आपके साथ जो काम करने वाले लोग हैं, उन सब का भी भला करते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और ग्रामीण तबकों में क्या होता है आरती, महिलाएं एक साथ समूह में इकट्ठी होकर वो लघु उद्योग, लघु कुटीर उद्योग जिसे हम कहते हैं, शुरू करती हैं, छोटे छोटे, और उनमें अलग अलग चीजें बनाती हैं, फिर वो सब मिलकर अपना घर भी चलाती हैं। तो इस तरह के भी जो है कुटीर उद्योग गांवों की महिलाएं खासतौर से, लेकिन उनको एक बड़ा व्यक्ति ऐसा मिल जाए, बड़ी सोच वाला, जो उन सबको इकट्ठा करके इस तरह का एक बहुत बड़ा,
1: एक मालिकाना हक भी दे दे साथ में।
0: इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हमने देखी हैं जो 70-80 महिलाओं का समूह इकट्ठा करके गृह उद्योग धंधे शुरू करती हैं और वो वहां पर सभी को जो है अपने अपने तरीके से मालिकाना हक भी मिल जाता है।
1: और ये काम करने से उनके अंदर भी एक आत्मविश्वास आता है ना कि हम भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमें शहर जाना पड़े कुछ काम करने के लिए।
0: वो ग्रामीण तबके में रहकर
1: हम अपने घर में रहकर, अपने गांव में रहकर भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं
0: और आर्थिक रूप से मजबूत हो जाती है। सबसे बड़ी बात है स्त्री का आर्थिक रूप से मजबूत हो। और अभी क्या जरूरी है?
1: अंतराल।

0: हाँ तो आरती, पता है कभी कभी हम बहुत बेचैन होते हैं ना, तो कागज के दिल पे कुछ ना कुछ लिखने लग जाते हैं।
1: हाँ बिल्कुल।
0: और इसी चक्कर में हम साहित्यकार भी बन जाते हैं, लेखक बन जाते हैं, कवि बन जाते हैं
1: जी।
0: और कहते भी हैं कई बार आपका मन बहुत बेचैन है, मन में बहुत सारी बातें हैं, तो उन्हें कागज पे लिख दो, एक डायरी मेंटेन करो, कहा जाता है ना कि डायरी लिखो, ताकि जो सहन शक्ति जवाब दे गई है वो आपकी कलम से आपकी किताब में एक संकलन के रूप में आ जाएगी।
1: और वैसे भी कहते हैं ना, अगर आप लिख लेते हैं ना कोई भी चीज, तो आपका गुस्सा थोड़ा सा कम हो जाता है, आप थोड़े शांत हो जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो बहुत जरूरी, लिखना तो वैसे भी बहुत अच्छा है,
0: बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप लेखक नहीं भी हैं तो अपनी सहनशीलता को बनाए रखने के लिए लिखने का अभ्यास शुरू कर देना चाहिए, ताकि जैसे ही गुस्सा आया, लगा कि कुछ बोलने वाली हूँ, तुरंत कागज पेन निकाला और उस गुस्से को कागज के द्वारा अंकित कर दो, तो एक बार कागज पे वो गुस्सा उतर जाएगा।
1: बिल्कुल, आप बाद में से इरेज कर सकते हैं,
0: उसे मिटा सकते हैं, आप मिटा सकते हैं, फाड़ सकते हैं कागज को कि आपका गुस्सा निकल गया, लेकिन मन आपका शांत हो जाता है। तो इसीलिए कहते भी हैं कि धैर्य रखिए, धैर्य का फल क्योंकि मीठा होता है, और आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में

0: क्या है कि धैर्य रखने का जो कड़ा इम्तिहान है एक तरह से, ये बहुत बड़ी परीक्षा हो जाती है। अगर किसी से हमारी लड़ाई हो गई, किसी ने हमारी बात काट दी तो हम गुस्से में आ जाते हैं, सड़क पर ट्रैफिक मिल गया तो हम परेशान हो जाते हैं, मोबाइल में हम इतना कुछ लिखते हैं अगर हमें लाइक नहीं मिले पर्याप्त, किसी ने असहमति जता दी, किसी ने काट कर दी, किसी ने आपको पसंद नहीं किया तो हम गुस्से से भनभना जाते हैं और लगते हैं क्या जो बात कर देंगे, और बात गर्मा गर्म स्थिति तक पहुंच भी जाती है।
1: बिल्कुल, अक्सर ट्रैफिक में तो अक्सर ही ऐसा होता है ना कि लोग एकदम से लड़ पड़ते हैं कि क्यों आप आगे निकल, अगर कोई आगे निकल जाए कोई पीछे रह जा रहा है तो लड़ रहे हैं, मतलब कोई भी किसी भी बात पर हम लड़,
0: मतलब हम अपने वाहन में बैठे बैठे भी गुस्सा निकाल देते हैं और इतने गुस्से में आ जाते हैं कि कई बार हम इस तरह की पढ़ भी रहे हैं स्थितियां कि ट्रेनों में दो लोगों के बीच में तकरार हुई और बात कहां से कहां पहुंच गई, यानी सहनशीलता की कमी होना।
1: बिल्कुल, और सहनशीलता का मतलब हर बात को चुपचाप सह लेना भी नहीं होता है, और जब परिस्थितियां हमारे खिलाफ हों उस समय आप थोड़ा सा धैर्य अगर हम बना के रखते हैं ना और दूसरों के विचार को सुनते हैं और तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए, कोई भी बात हो तुरंत प्रतिक्रिया देने से ये होता है ना कि हम गुस्से में होते हैं उस समय, तो उस समय हमें पता नहीं होता कि हम क्या कह रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो हम सिर्फ गुस्से में अपनी गुस्सा निकाल रहे होते हैं तो उस वक्त हम कुछ भी उल्टा सीधा बोल सकते हैं, तो रिश्ते भी उससे खराब हो सकते हैं, दोस्ती टूट सकती है। तो इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए कि हम जो भी बोलें सोच समझ के,
0: तोल मोल की बोल कहा जाए है ना। और आज की जो टेक्नो समय जो आ गया है इसमें क्या हो गया आरती की, हमें हर चीज तुरंत पाने की आदत हो गई, एक क्लिक में हमें सारी चीजें मिल जाती है, सामान हुआ कुछ भी कुछ ही सेकंड से हमें मिल जाता है। एक समय होता था जब हमें सोचना पड़ता था कि हमें जाना है, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, सामान लाना पड़ेगा, अब बस केवल एक क्लिक करने की जरूरत होती है और सामान आपके घर पर आ जाता है।
1: 5 मिनट का अगर सामान हमारे पास 5 मिनट में नहीं पहुंचा तो एकदम से हम गुस्से में आ जाते हैं, उसको फिर चिल्लाने लगते हैं जो सामान लेकर कि 5 मिनट से 1 मिनट कैसे ज्यादा हो गया,
0: ज्यादा कैसे आपने कर दिया। सोचिए हमारी सहन शक्ति कितना जवाब दे गई है। तो ये जो तनाव है, काम का जो दबाव है, प्रतिस्पर्धा है, और ये जो रोज की दिनचर्या में इतनी व्यस्तता है हमारी झुंझलाहट को और हमारी स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रही है।
1: बिल्कुल, और जरा सोच कर देखिए जब कोई हमारे संदेश का तुरंत जवाब नहीं देता है तो मन में पहला विचार क्या आता है कि आखिर आया क्यों नहीं जवाब,
0: क्या बात
1: लिखा था, क्यों नहीं आया उसका जवाब, शायद मुझे जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है। हम अक्सर जल्दबाजी में पूरी बात जाने बिना नतीजे पर पहुंच जाते हैं और यहीं से गलतफहमी शुरू हो जाती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, हो सकता है आपने कोई सवाल पूछा और सामने वाले के पास टाइम नहीं हो या वो उस वक्त यात्रा में हो या परेशानी में हो, जवाब नहीं दे पाया हो, हमने उसका तुरंत अपने तरीके से उत्तर निकाला और फटाफट उसे अपना ही जवाब दे डाला, और
1: हो सकता है वो नहीं देना चाह रहा उस समय,
0: ये भी हो सकता है
1: चाह रहा हो, समझना चाह रहा हो, या उसके बारे में पड़ताल करना चाहता।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी स्थिति हो सकती है। तो सहनशीलता की जो कमी है वो उसका असर हमारे व्यवहार पर ही नहीं पड़ता आरती, बल्कि हमारे रिश्तों पर भी पड़ता है हम जानते हैं, और परिवार में छोटी सी बात पर बहस, दोस्तों में नाराजगी और कार्यस्थल पर मतभेद होना, इन सब के पीछे कई बार हमारी ये जो अधीरता है यही जिम्मेदार होती है।
1: बिल्कुल, सोशल मीडिया ने भी हमारी सहनशीलता को कम करने में बड़ी भूमिका निभाई है। अलग विचार रखना लोकतंत्र और समाज की स्वाभाविक विशेषता होती है, लेकिन असहमति को व्यक्तिगत विरोध मान लेना रिश्तों और सामाजिक संवाद दोनों के लिए नुकसानदायक होता है। कि असहमति अगर कोई हमसे असहमत है तो हमें लगता है कि वो हमारे विरोध में है, हम उसके विचार को नहीं जानना चाहते, वो किस तरह से क्या सोच रहा है वो उसको नहीं जानना चाहते, बस हम सोचते हैं कि ये हमारे विरुद्ध है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और हम उसका सम्मान भी नहीं करना चाहते कि उसके विचारों का हम सम्मान करें। अगर वो हमारे विरुद्ध कोई बात कह भी रहा है तो पहले समझें कि वो क्यों कह रहा है।
1: सबका अपना अपना नजरिया
0: हो सकता है, नजरिया हो सकता है आपके प्रति, और सहनशीलता को बढ़ाना कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके लिए ये जरूरी है कि हम धैर्य रखें, धैर्य पूर्वक दूसरे को सम्मान दें, सुने, दूसरे व्यक्ति को अपनी बात पूरी करने का मौका दें और गुस्से में तुरंत जवाब नहीं दें, कुछ देर रुकें, सोचें, दूसरे की सोच को समझें, क्योंकि जरूरी नहीं कि सामने वाला गलत ही हो और हम ही सही हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल, एक बहुत ही जरूरी बात ये भी है कि हमें छोटी छोटी बातों को जाने देना सीखना होगा, हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता, और कई बार हमारी चिड़चिड़ाहट हमारे जो सामने है उसके सामने वाले की गलती से ज्यादा हमारी अपनी थकान और तनाव का परिणाम होती है जो हम चिड़चिड़ा रहे होते हैं इस समय। तो हम अक्सर सहनशीलता को कमजोरी मान बैठते हैं, जो बिल्कुल गलत सोच है।
0: बिल्कुल, हमें लगता है आक्रामक रूप बनाए रखना ही आज के जमाने में बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं होता। आपकी सहनशीलता बहुत बहुत मायने रखती है आपके लिए,
1: एक अलग पहचान बनाती है कि इतना सब सामने वाला इतना गुस्सा हो रहा है, इतना चिल्ला रहा है ना, लेकिन आप एकदम शांत खड़े,
0: आपने अपनी सहनशीलता को बनाए रखा है।

0: कितनी बड़ी बात है, इसे कमजोरी नहीं समझना चाहिए। हम समझते हैं कि अरे सामने वाला कितना कमजोर है, देखो इतना सुनने के बाद भी चुप बैठा रहा, मैं होती तो ऐसा कर देती, है ना। ये जो
1: चुप बैठना सबसे बड़ी ताकत,
0: बहुत बड़ी, और सामने वाले को भी हिला कर रख देती है, है ना, आपकी चुप्पी। तो सहनशीलता का मतलब कमजोर होना बिल्कुल नहीं है, और देखा जाए तो अपने गुस्से और भावनाओं को नियंत्रण रखें, अपने आप अपने भीतर एक बहुत बड़ी ताकत महसूस करेंगे। इसके अलावा हम दूसरे को धैर्य से सुने, रिश्तों को समझें, और कम बोले, सोच समझ कर बोले तो विवाद भी कम होगा, और जब हम किसी की असहमति का सम्मान करेंगे तो लोगों में हमारा संवाद भी मजबूत होता है।
1: बिल्कुल, और हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है, हर मतभेद को विवाद बनाना भी जरूरी नहीं है, और हर परिस्थिति को अपने अनुसार बदलना भी जरूरी नहीं है। कभी कभी थोड़ा ठहर जाना, और सबसे जो कहते हैं ना, सबसे बड़ा समझदारी वाला कदम होता है
0: वो ये होता
1: तो है। थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा सोचिए, थोड़ा समझिए, और दूसरे को भी समझने की कोशिश करिए कि अगर ऐसा व्यवहार कर रहा है तो उसके पीछे कोई कारण है, क्या है, तो उसके बिना आप एकदम से प्रतिक्रिया मत दीजिए,
0: मत दें, और स्पेस दें खुद को भी और दूसरे के विचारों को भी, ताकि सोचने समझने का मौका मिले। एक श्रोता लिखते हैं कि सहनशीलता कमजोरी नहीं बल्कि भीतर की शक्ति है, ये हमें सिखाती है कि हर उत्तर शब्दों से देना आवश्यक नहीं होता, कुछ उत्तर स्वयं समय दे देता है, सहन करने की अपनी एक गरिमा है, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, कुछ रिश्ते खामोशी से बच जाते हैं और कुछ सच वक्त के साथ सामने भी आ जाते हैं, है ना।
1: और एक श्रोता जो लिखते हैं कि सहनशीलता का मतलब हर बात सहना नहीं बल्कि हर बात पर रिश्ता को तोड़ना नहीं होता है, कुछ बातों को समझ कर, कुछ को मुस्कुरा कर छोड़ देना ही शायद रिश्तों की सबसे खूबसूरत समझदारी है।
0: और हमारे एक श्रोता ने बहुत सुंदर कविता लिखी है हमारे आज के जो भी सेगमेंट है उन पर, कि मंदाकिनी जी की मधुर आवाज, आरती जी का साथ, सखी सहेली सजाए हर दिन नई बात, लोकतंत्र का संदेश, सहनशीलता की पुकार, सुमिता घोष संग रंग सूत्र की सुंदर बहार, कान भरना मुहावरे की दुनिया का ज्ञान, खाने की अतरंगी आदतों से मुस्कान, विविध भारती की ये प्यारी सी महफिल, मंदाकिनी जी आरती जी बनाए हर पल दिलकश मंजिल।
1: बहुत अच्छा लिखा है। तो एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि जीवन में कोई भी निर्णय लेते समय सहनशीलता की बड़ी जरूरत होती है, मगर आज के युग में जो चीज सबसे ज्यादा इंसानों के अंदर से खोती जा रही है वो है सहनशीलता का गुण। आक्रामकता को इंसान अपना गुण मानने लगा है, जीवन में आक्रामकता पूरा धागा ही उलझा देती है, ये इंसान सोचता ही नहीं। सहनशील और धीर गंभीर इंसान की छवि अलग ही दिखती है, सो सहनशील बनिए और जीवन को सुगम बनाइए।
0: बिल्कुल, बहुत सुंदर लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं कि जहाँ सहनशीलता है वहाँ प्रेम सम्मान और रिश्तों की गर्माहट भी बची हुई है, वरना आज की तेज रफ्तार जिंदगी में इंसान के पास सब कुछ है, बस ठहर कर सुनने और समझने का धैर्य कम होता जा रहा है। छोटी सी बात पर नाराजगी, जरा सी असहमति पर रिश्तों में दूरी और अपनी बात मनवाने की जिद सहनशीलता को धीरे धीरे पीछे छोड़ रही है। सहनशीलता कमजोरी नहीं बल्कि रिश्तों को बचाए रखने की एक बहुत बड़ी ताकत है।
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि खत्म होती जा रही सहनशीलता का कारण मानसिक तनाव है, जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लगातार देखने को मिल रहा है। इसका मुख्य कारण मानसिक दबाव और धैर्य की कमी होती है। इसमें सोशल मीडिया का भी काफी प्रभाव है। इसके द्वारा तुरंत मिल रही जानकारी या मिल रहे मैसेज ने पुराने जमाने के खत लिखने के धैर्य भरे दौर को खत्म कर दिया है। मतलब हम सोच समझ के लिखते रहे, दो दो तीन तीन दिन में खत
0: पहुंचते थे
1: जी, तो वो मजा इस टेक्नोलॉजी में कहां जो खतों के इंतजार में पोस्टमैन की राह तकते रहने में हुआ करता था। सहनशीलता पाने के लिए तनाव को छोड़कर शांत लहरों पर जीवन की नाव पर सवार होना पड़ेगा।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा लिखा है। और अब हम भी गीत संगीत की नाव पर सवार हो जाते हैं,
1: गीत सुनते हैं।

0: तो आरती, जब हम बात कर रहे हैं आदतों की कि हमारे अंदर सहनशीलता का होना कितना जरूरी है, वहीं कुछ आदतें ऐसी भी हैं जो हमारी हमें हंसी का पात्र भी बना देती हैं, है ना। अभी बताऊं तुम्हें, आज जब मैं सुबह चाय के साथ बिस्किट खाती हूँ हमेशा, आज मैंने सोचा कि नमक का पराठा खा लूं और चाय में डुबो कर खा लूं, है ना, तो कैसा लगेगा। और बाद में मुझे अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हो पाई, क्योंकि ये कैसा कॉम्बिनेशन, मैं सोच रही थी ये खाने का भला कोई ऐसे खाता है क्या।
1: लेकिन सबसे मजा आता है,
0: मजा आता है। तुमने खा के देखा है इसका मतलब?
1: मैंने खाया है
0: ठीक है।
1: और मतलब हर व्यक्ति का खाने का अंदाज अपना अपना होता है। किसी को गरम गरम रोटी के साथ ठंडी ठंडी दही पसंद होती है, तो कोई चाय के साथ नमकीन की जगह बिस्किट को चाय में डुबोकर खाने का मजा लेता है। कुछ आदतें इतनी अनोखी होती हैं कि सामने वाला देखकर बस यही कहता है कि भला ऐसी भी कोई खाता है। जैसे कि मैं खाती हूँ कैसे जलेबी को सॉस
0: डुबोकर और मैंने देखा हमारी एक नून है, वो पहले दाल पी जाती है और उसके बाद जो चावल है ना वो सूखे खाती है। तो हम अच्छा। उन्हें हंसते थे कि अब आप क्या गोल गोल लौटने वाली हैं कि दाल चावल मिल जाएगा आपका। वो ऐसे ही खाती थी, पहले दाल का कटोरा जो अच्छा। लिया और दाल पूरी पी ली, उसके बाद वो सूखे चावल जो सफेद चावल हम उबाल के रखते हैं उन्हें खाती थी। तो अच्छा। ये भी एक अजीब ही किस्म की आदत है जिसे हम कई बार जब देखते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। बच्चों में तो ऐसी आदतें हमें मिल जाती हैं कि सब्जी अलग रोटी अलग दाल को चावल के साथ मिलाने में वो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। कुछ लोगों को मैंने, जैसा तुमने कहा, मीठी जलेबी और सॉस के साथ खाती हो तुम, और कुछ लोग खाने को बहुत धीरे धीरे चबाकर खाते हैं, जबकि कुछ लोग फटाफट एक रोटी को दो ही उसमें खा लेते हैं टुकड़ों में। तो ये खाने के जो तरीके हैं हालांकि हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं, इसलिए सबसे बड़ी बात कि इस का भी ध्यान देना बहुत जरूरी है कि हम कुछ भी खा रहे हों लेकिन वो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा है, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए।
1: जी बिल्कुल। जैसे कि हमारी एक श्रोता है जो लिखती है कि आज खाने की अतरंगी आदतें देखकर मुझे भी कुछ याद आ गया। मैं जब छोटी थी तब पापा जी के ट्रांसफर के कारण हम लोग दूसरे शहर में आए, और जिस घर में रहने के लिए आए वहां के मकान मालिक के बच्चों को हमने देखा कि वो चावल के साथ दूध का पाउडर खाते थे। उनको देखकर हमें भी शौक चढ़ा पर हम लोग नहीं खा पाए। सच में तो बहुत ही अलग चीज है।
0: बिल्कुल सही कहा। वही एक श्रोता लिखती है कि खाने की आदतें, भाई आदतें सभी की अच्छी हो ऐसा नहीं हो सकता, और यदि है तो फिर कहने ही क्या। लेकिन अतरंगी शब्द या ये तो कार्यक्रम से स्पष्ट हो सकता है कि भोजन सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं बल्कि हमारे मूड, दिमाग और विज्ञान से गहराई से भी जुड़ा है। भावना और मूड का असर खाने की तीव्र इच्छा अक्सर तब होती है जब हम तनाव में होते हैं या हमें किसी अपने की याद आती है। कई बार खाने के तुरंत बाद घबराहट होती है, बेचैनी महसूस होती है, क्योंकि हमारा पेट, हमारे दिमाग

0: से सीधे तौर पर जुड़ा होता है। अगर नाक बंद हो तो हमें खाने का असली स्वाद पता ही नहीं चलता और 80% हिस्सा हमारी सूंघने की क्षमता पर भी निर्भर करता है। और अचानक कभी कभी किसी खास चीज को देखने से भोजन से अरुचि हो जाती है या हमें कह जैसे उल्टी महसूस होने लगती है। तो जब तक आपकी तीव्र इच्छा नहीं हो आप कोई भी चीज नहीं खाएं, ये ध्यान रखिए
1: जी। और एक हमारी सखी हैं जो लिखते हैं कि सखियों कभी कभी हरी मूंग की दाल वाली खिचड़ी में गुड़ डालकर खाया है कभी, बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा,
1: तो इन्होंने यानी खिचड़ी में गुड़ डाल के खाया है। तो ये भी हमें करना चाहिए ट्राई इसका मतलब। और हमारे साथी जो लिखते हैं कि खाने की अतरंगी आदतें, भाई आदतें तो सभी अच्छी ही हो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन यदि है तो फिर कहना ही क्या, लेकिन अतरंगी शब्द है या अतरंगी, ये इन्होंने कार्यक्रम में स्पष्ट होगा तो अब इनको शायद स्पष्ट हो गया होगा।
0: वही एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे घर वालों की आदत है कि कटोरे में ही दाल सब्जी को मिला के मिक्स करके खाते हैं और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पर मेरे घर वालों को लगता है कि जो मेरे घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनको कि खाना खाने से इससे स्वादिष्ट लगता है, मतलब एक ही कटोरे में दाल चावल मिक्स करके खाया जाए, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे ही मेरे घर वालों की आदत है समोसे में सब्जी को पूरी तरीके से मिक्स करके खाने की, ये भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और लोग कहते हैं कि एक बार खाकर तो देखो, पर मैं इसे आज तक नहीं खा पाई, इन दोनों ही तरीकों को मैं कभी भी नहीं मतलब ये इसको स्वीकार ही नहीं कर पाए हैं कि कभी दाल भात को साथ नहीं खाया इन्होंने एक कटोरे में लेकर और ना समोसा खा पाए हैं।
1: अच्छा, तो होता है ना कुछ अतरंगी आदतें ऐसी होती है ना कि समझ नहीं आता कि ये ऐसी क्यों होती है, मतलब इस तरह से हम कैसे खा लेते हैं, दूसरे को जब हम खाते देखते हैं ना तो लगता है कि कैसे खा रहा है इस तरीके से।
0: हाँ, एक लिखते हैं कि हमें कभी कभी बूंदी में सेव मिलाकर खाना अच्छा लगता है। हाँ, ये तो होता है। हाँ, बूंदी और जो भुजिया जिसे हम नमकीन भुजिया उसे मिलाकर लोग खाना पसंद करते हैं, लेकिन हर एक को वो भी पसंद नहीं आता है।
1: बिल्कुल, सबके अपनी अपनी आदतें अलग अलग तरीके से होती हैं।
0: हाँ, एक श्रोता लिखते हैं कि हल्की फुल्की आदतें, अतरंगी खाना खाने की आदत, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि बड़े अलग तरीके से खाना खाते हैं। और जैसे एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे कुछ याद आ गया, मैं जब छोटी थी तब पापा जी के ट्रांसफर के कारण हम लोग दूसरे शहर में आए और जिस घर में रहने आए वहां के मकान मालिक के बच्चे को हमने देखा कि वो, अच्छा अभी तुमने बताया कि चावल के साथ वो दूध अमूल दूध इस्तेमाल करके खा रहा था, तो ये देखकर उन्हें बड़ी हंसी आई, उन्होंने इसको खा के देखा लेकिन उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और एक लिखते हैं कि मुझे चाय के साथ कुल्फी चूसना बेहद पसंद है।
1: अरे भैया, चाय के साथ कुल्फी,
0: सर्दी गर्म तो नहीं होता
1: है, बिल्कुल अलग है।
0: हाँ, बस ये मुझे भी एक साथी मिले और उन्होंने कहा कि अभी कॉफी पी है, चलिए अब जो है हम आइसक्रीम खा लेते हैं। आइसक्रीम खाने के बाद उन्होंने कहा कि चलिए अब गर्म दूध पी लेते हैं। मैंने कहा भाई ये कैसी आदतें हैं आपकी, लेकिन वो आराम से कर रहे थे इन बातों।
1: बिल्कुल नहीं, जिनको आदत होती है ना इस तरह की चीजें खाने की तो उनको कोई परेशानी नहीं होती है,
0: लेकिन हमें तो हो जाती है। अभी हमारे श्रोताओं को हो जाएगी अगर हमने उन्हें एक गाना नहीं सुनवाया तो।

0: भौतिक चीज या वस्तु को भरना नहीं होता है। इस मुहावरे का अर्थ किसी व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत, चुगली करना या उसके प्रति गलत भावना या संदेह पैदा करना होता है। गुजराती में इसे कान भंभेरनी बोला जाता है।
1: अच्छा, वही एक श्रोता लिखती है कि कान भरना यानी चुगली करना, मेरे हिसाब से चुगली करने वाले से ज्यादा गलती चुगली सुनने वालों की होती है, क्योंकि यदि हमसे कोई चुगली कर रहा है और अगर हम उसे कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएं तो सामने वाला दोबारा चुगली करने की कोशिश भी नहीं करेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि किसी के मन में दूसरे के प्रति गलत या नकारात्मक बातें डालना, उसे भड़काना, जैसे कि हम कोई दो लोग अच्छे मित्र हैं तो उनके बीच में तीसरे व्यक्ति ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया किसी दूसरे के कान में, तो इससे दोनों के बीच में गलत फहमी पैदा हो जाए, तो इसे कान भरना कहते हैं।
1: बिल्कुल। वही एक श्रोता लिखते हैं कि कान भरना, भाई कान है तो भरे ही जाएंगे ना। फिर कर्ण पूरण की विधिवत विधि भी बताई गई है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप कर्णेंद्रिय का विकास भी होता है, किंतु यहाँ कान भरने का तात्पर्य किसी के खिलाफ किसी को उकसाने मात्र से ही है, और कच्चे कान वाले लोग इसके शिकार शीघ्र बन जाते हैं, और इस दृष्टिकोण से ऐसे लोगों से सावधान रहना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल। और एक और हमें जो श्रोता है जो लिखते हैं कि चुपके से किसी के खिलाफ ऐसी बातें कहना जिससे कि वो सामने वाले व्यक्ति से नफरत करने लगे या उस पर शक करने लगे। ऐसा माना जाता है कि यदि खाने में जहर मिल जाए तो उसका इलाज संभव है, लेकिन कानों में घुला गया जहर रिश्तों को अंदर से खोखला बना देता है और इसका कोई आसान इलाज भी नहीं है। तो क्या कह सकते हैं?
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और कई कई इसका सबसे बड़ा उदाहरण मानी जाती है जब हम जिक्र करते हैं कान भरने का। तो अब तो कार्यक्रम का समय इजाजत नहीं दे रहा है कि हम और कान भरें अपने श्रोताओं के।
0: बिल्कुल।
1: तो कार्यक्रम सखी सहेली से मंदाकिनी जोशी और
0: आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति।
1: नमस्कार।
0: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे। श्रोताओ, आज इस प्रोग्राम में हम आपकी भेंट करवा रहे हैं टेलीविजन और फिल्मों से जुड़े अभिनेता कमलजीत से। आपसे बातचीत की है सविता बजाज ने।
1: कमलजीत जी नमस्ते।
2: नमस्कार,
1: आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं
2: जी।
1: अच्छा, आज के माहौल में जब टीवी का बोलबाला है और आप करीब हर चैनल पर नजर आते हैं, तो कैसा लगता है ये सब देखकर?
2: बड़ा अच्छा लगता है सविता जी, क्योंकि कलाकार अगर काम अच्छा कर रहा हो और वो ऑडियंस उसे सराहती है तो कलाकार का उत्साह बढ़ता है, वो और भी अच्छा काम करने की कोशिश करता है, तो ये सब अच्छा लगता है कलाकार को।
1: अच्छा, आप तो अभी टीवी के स्टार बन गए, फिल्मों में नाम तो आपका बहुत हुआ बतौर हीरो, लेकिन कभी ये सोचकर मलाल नहीं होता कि मैं स्टार नहीं बन सका?
2: देखिए, सिनेमा से मुझे बहुत इश्क है, अब भी है, पहले भी था, क्योंकि मैं बेसिकली फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट हूँ, तो सिनेमा से तो मुझे बहुत लगाव है, इश्क है, मोहब्बत है, लेकिन वहाँ न बन सका इसका मलाल मुझे नहीं है। अब भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि दुनिया में मैं समझता हूँ कभी भी कुछ भी किसी वक्त भी हो सकता है कि मैं फिर से वापस सिनेमा करने लगूँ, लेकिन शर्त यह है कि मुझे मेरी पसंद के रोल अगर मिलेंगे और मुझे अच्छा लगेगा वो कोई भी रोल, तो मैं करूंगा।
1: तो इसी बात पे गाना हो जाए आपकी पसंद का?
2: जरूर।
1: कौन सा गाना सबसे पहले सुनाना चाहेंगे आप?

0: जिन दिनों जब मैं फिल्में किया करता था
1: जी,
0: तो उस जमाने की एक फिल्म का जो मेरी सबसे पहली ऑलमोस्ट फिल्म थी शंकर हुसैन, उसमें गाना था बड़ा खूबसूरत, लता जी ने गाया था, अपने आप रातों में चिलमने सरकती हैं, चौंकते हैं दरवाजे, सीढ़ियां धड़कती हैं।

0: आपने संघर्ष तो खूब किया
1: जी।
0: और बहुत समय लगा मुझे लगता है पहचान बनाने में, तो ये पहचान आपकी कैसे बनी?
1: के कुछ लोगों की इमारत जो है सबसे पहले बन जाती है, वो दिखने लगती है, कुछ लोग बुनियाद काफी देर तक बनाते रहते हैं। तो मेरे हिस्से में मेरा ख्याल बुनियाद ने काफी टाइम ले लिया, और फिर जब बुनियाद मिली तो उसके बाद लोगों ने काम भी अप्रिशिएट किया और फिर काम मिलना भी बाकायदा शुरू हो गया।
0: मेरे ख्याल बुनियाद की बात निकली तो बुनियाद सीरियल भी आपका काफी हिट हुआ था
1: जी,
0: उसी से बात बनी ना?
1: जी जी जी, तो उससे काफी टेलीविजन में काम मिला उसके बाद।
0: अच्छा, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में क्या एक अजीब सी बात है कि आपकी फिल्म हिट होती है तो इसका फायदा तो सबको होता ही है, तो क्या सीरियल में भी ऐसा चलन है? क्योंकि चैनलों की भीड़ बढ़ती जा रही है, जैसे कि आप बहुत से सीरियल कर रहे हैं, सांस है, बुनियाद, दरार, किस्मत, फरमान वगैरह, तो ये कंपटीशन को आप कैसे फेस करते हैं?
1: ये सब ऐसा ही है जैसे फिल्मों में होता है, मतलब फिल्में अगर आपकी चलती हैं आपको काम मिलता रहता है, सीरियल आपको आपके चलते हैं या चल रहे हैं, आपका काम अप्रिशिएट हो रहा है तो आपको काम मिलता रहेगा। देखिए बेसिकली अगर आप डॉक्टर हैं, आपके पास अगर पहले दो मरीज आए और वो आपके हाथों मरे जाए तो फिर मेरा ख्याल आपके पास कोई दूसरा मरीज नहीं आएगा। तो ऐसा ही है, एक्टर की अगर पहली फिल्म या पहले दो तीन सीरियल चल गए तो उस बेचारे को काम मिलता रहता है, वरना उसी तो डॉक्टर वाला हिसाब होता है।
0: अच्छा, आपने फिल्में भी बहुत की और सीरियल भी बहुत किए, शंकर हुसैन फिल्म की आपने, फिर सत्ते पे सत्ता की, अशांति की, माचिस हाली में की, एक शर्त भी फिल्म की थी, और सीरियल तो आपने मेरे ख्याल से सैकड़ों कर लिए, तो फिल्म और सीरियल
1: आप शिकायत कर रही हैं या बता रही हैं?
0: क्योंकि मैं तो रोज ही जब टीवी ऑन करती हूँ तो आप ही आप दिखाई देते हैं।
1: नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो असल में ये कई लोग ये सोचते हैं ऐसा, क्योंकि ये जो नए चैनल आए हैं इसमें प्रोग्राम्स क्योंकि रिपीट होते हैं तो ऐसा लगता है लोगों को कि ये बहुत आ रहा है, पर मैं ज्यादा काम लेता नहीं हूँ, उतना ही लेता हूँ जितना मैं अच्छी तरह निभा सकूँ जिसे।
0: अच्छा, anyway,
1: तो क्या कह रही थी आप?
0: फिल्म और सीरियल आप करते हैं इकट्ठे, तो अभिनय में क्या कुछ फर्क होता है, जैसे कि स्टेज और फिल्म में अभिनय का फर्क होता है, इस तरह से सीरियल और फिल्म में भी फर्क होता है?
1: नहीं, अभिनय में फर्क थिएटर और सिनेमा में शायद हो, और है भी थोड़ा सा, वहाँ पे एक दो सुर ऊपर करना पड़ता है थिएटर में। जी हाँ, थिएटर में
0: जी।
1: सिनेमा में क्योंकि एक एक आपकी टाइट क्लोजअप में, इतने बड़े क्लोजअप में आपका एक एक नस दिखती है कैमरे को, तो उसमें आपको इतना एग्जैजरेट नहीं करना पड़ता। ऐसा ही मैं समझता हूँ टेलीविजन और सिनेमा में, एक्टिंग में कोई फर्क नहीं। हाँ, डायरेक्शनल टेक्निक्स में फर्क हो सकता है भी, क्योंकि ये मीडियम जो टेलीविजन का है वो क्लोजर मीडियम है शॉट्स का, लेकिन एक्टिंग के लिहाज से मैं नहीं समझता हूँ। आप जैसे अपना कैरेक्टर किरदार वहाँ निभाते हैं सिनेमा में, वैसे ही आपको यहाँ पे करना पड़ता है।
0: ये फिल्म में तो बहुत ऑथेंटिसिटी दिखानी पड़ती है ना,
1: क्यों हम लोग टेलीविजन में नहीं दिखाते? मेरा ख्याल हम लोग टेलीविजन में ज्यादा ऑथेंटिसिटी दिखाते हैं।
0: यही बात तो उगलवाना चाहते,
1: गुस्सा आ गया, गुस्सा दिलवा के।
0: अच्छा, जब शुरू शुरू में सीरियल बनने शुरू हुए थे तो फिल्मी एक्टर से, माफ कीजिए, छूत की बीमारी समझते थे, कहते थे कि नहीं छोटे से बक्से में कौन अभिनय करेगा सविता जी, अब तो बड़ा एक्टर जो भी है वो सब सीरियल में ही अपने आप को कैश कर रहे हैं, क्या ख्यालात हैं इस बारे में?
1: देखिए, मेरे ख्यालात जो हैं इस बारे में बड़े सीधे और ये हैं, मैं सिनेमा को नंबर वन समझता हूँ, बट टेलीविजन का शुक्रगुजार हूँ कि इसने मुझे काम दिया और मेरा किचन चलाया, लेकिन सिनेमा जैसा मैजिक टेलीविजन पर नहीं है और नहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि टेलीविजन जो देखा जाता है वो ऐसे माहौल में देखा जाता है जहां पे और इतनी 100 डिस्ट्रैक्शन है, आपका बच्चा रो रहा है, अभी खाना बनाना है, वो उसने स्कूल जाना है, कल के स्कूल की तैयारी करनी है, कुछ भी करना है। सिनेमा एक हॉल में देखा जाता है, इट इज अ ग्रेट मैजिक, इट इज अ मोस्ट ब्यूटिफुल आर्टिस्टिक अचीवमेंट आई थिंक सिनेमा इज। तो मेरे लिहाज से अगर मुझे आज

0: कहा जाए सिनेमा और टेलीविजन में कौन सा बेटर मीडियम है, डेफिनेटली सिनेमा है। लेकिन क्योंकि सर्वाइवल, हर एक को सर्वाइव करना है यहाँ, तो जो सिनेमा में नहीं है वो टेलीविजन में है, जो सिनेमा में बहुत अच्छा जिनका करियर जा रहा है वो टेलीविजन में नहीं आना चाहते, दैट इज अंडरस्टैंडेबल।
1: बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसी बात पे, इसी अच्छी बात पे एक अच्छा सा गाना सुना दीजिए।
0: तो फिर अच्छे से शायर का ही सुनाते हैं
1: जो आपको पसंद हो।
0: गालिब की एक गजल है, मुझे बड़ी पसंद है, और जगजीत ने बहुत खूबसूरती से गाई है, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक।
1: वाह वाह वाह।

0: पवन जी, पहले एक्टर स्टेज को स्टेपिंग स्टोन बना के फिल्मों में आते थे, मतलब प्रवेश करते थे, और अब उल्टा हो रहा है कि फिल्मों से सीरियल में आ रहे हैं। ये उल्टी हवा कैसे बह निकली?
1: फिल्मों से सीरियल में आ रहे हैं, मेरा ख्याल इसलिए आ रहे हैं जो फिल्मों से निकाले जा रहे हैं, उसी से आ रहे हैं। सीधी बात,
0: निकाले नहीं जा रहे, दोनों जगह काम कर रहे हैं।
1: जिनको काम नहीं मिला, जिनको मैंने वही पहले ही अर्ज किया है कि अगर जो जिसका करियर बहुत अच्छी तरह चल रहा है फिल्म में, वो टेलीविजन में नहीं आना चाहता है, एंड इट इज अंडरस्टैंडेबल, ऐसी कोई बुरी बात नहीं है, और ऐसा उसको अपटी बिहेवियर समझा जाए ऐसा भी नहीं मैं समझता।
0: मतलब रोजी रोटी का सवाल है,
1: नहीं रोजी रोटी का शायद भाई, वो क्यों लेसर मीडियम में आएगा? अगर मैं नॉवल लिख रहा हूं तो मैं रिपोर्टिंग न्यूज़पेपर के लिए क्यों करूंगा? सीधी बात, अगर मेरा नॉवल बिक नहीं रहा है तो मैं न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग करूंगा, ये है।
0: अच्छा, स्टार सिस्टम, इसका फिल्म जगत में साम्राज्य है जो लंबे समय से चल रहा है। सिर्फ ऐसा होता है कि चेहरे बदल जाते हैं, और अब यही बात सीरियल में भी लागू होती है। आपके क्या विचार हैं?
1: वो इसलिए क्योंकि बेसिकली मीडियम जो हैं सारे ये हम मूवी बिजनेस कहते हैं, टेलीविजन बिजनेस है,
0: बिजनेस
1: जी हाँ, तो

0: तक आपके प्रोग्राम बिकेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, तो आपको एडवर्टीजमेंट्स नहीं मिलेंगे, एडवर्टीजमेंट नहीं मिलेंगे तो चैनल कैसे रन करेगा, तो चैनल नहीं रन करेगा, तो वो फिर पूरा विशेष सर्कल है बड़ा। तो इसमें जो एक्टर्स जो थोड़े बहुत ऊपर हैं, टॉप लेवल पे हैं, उनके प्रोग्राम हिट हो गए हैं या उनको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो और क्योंकि लोग ज़्यादा पसंद करते हैं तो चैनल कहता है कि भाई इन एक्टर्स के साथ बनाओ।
1: मतलब यह ऐसा तो नहीं जो पैसा लगाता है वो बोलता है हमको यही चाहिए, जैसे फिल्मों में प्रोड्यूसर पैसा लगाता है।
0: नहीं नहीं, हाँ तो ऑब्वियसली जो पैसा लगाता है वो ये सोच के लगाता है कि मुझे पैसा रिटर्न होगा, मतलब रिटर्न में आएगा पैसा, वापस आएगा, जो लागत है मेरी वो कम से कम वापस वसूल होगी। तो वो कैसे होगी, पॉपुलर एक्टर को लेंगे आप, पॉपुलर हर जो चीज़ है जो डिमांड में है, जिसे सराहा जा रहा है इस वक्त, पब्लिक उसे चाह रही है, उसे ही आप लेके बनाएंगे ना।
1: अच्छा, जो ऐसे एक्टर हैं जिनको काम नहीं मिलता तो उनको क्या करना चाहिए आपकी राय में?
0: आप देखिए, हमें भी तो काम नहीं मिला था,
1: फिल्मों में भी काम नहीं मिलता और सीरियल में भी काम नहीं मिलता।
0: एक तो
1: कहाँ तो उम्मीद जगी थी कि सीरियल बन रहे हैं, तो जिनको फिल्मों में काम नहीं मिलता उनको सीरियल में भी मिले।
0: देखिए, अपने बारे में ऑब्जेक्टिव होना बड़ा मुश्किल है जिंदगी में। जब आदमी यहाँ पर ट्रेन में बंबई में उतरता है तो वो ये आप उससे पूछें, भाई तेरा अपने बारे में क्या विचार है, क्या राय है, तो वो ये थोड़ी कहेगा कि नहीं यार मुझे नहीं लगता मैं मेरा करियर यहाँ बनेगा और मुझे लगता है कि मुझे वापस लौट जाना चाहिए, ये कोई कहता है?
1: कोई नहीं कहेगा।
0: तो फिर तो या तो अपने बारे में बहुत ही ऑब्जेक्टिव आदमी हो, अपने आप को एक साल दे, दो साल दे, ढाई साल दे, तीन साल दे, भाई, या फिर बाप बहुत रईस हो समझे ना, जिसे कोई फर्क ना पड़े कि बेटा कर रहा है स्ट्रगल तो करता रहेगा। तो अब ये तो अपने पे निर्भर करता है कि मैं अपने आप को कितना वक्त देता हूं और मैं कितना मतलब मुझे कितनी अपने बारे में समझ है और मैं कितना इंटेलिजेंट हूं कि मैं कहूं कि यार बस अब बहुत हो गया, लेट अस ट्राई समवेयर एल्स।
1: कमल जी, जिंदगी का सफर तो हमेशा चलता रहता है, जैसे सुख दुख आते हैं इसी तरह फिल्म सीरियल और सीरियल फिल्म, ये चक्र घूम रहा है, बरसों से घूम रहे, कहीं ये थम गया तो क्या होगा, ये सोचकर कैसा लगता है?
0: हाँ, बहुत डर लगता है। देखिए, हर आदमी जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उसका काम कब अच्छा चलता रहे और कब तक चलता रहे इसका कुछ भरोसा नहीं। तो ये तो हमेशा इनसिक्योरिटी रहती है हर सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी को और हमारे कॉम के लोगों को यानी एक्टर्स को, कि भाई ये जो इस वक्त बड़ा अच्छा चल रहा है ये कल को ऐसा ना हो कि सब हमारे प्रोग्राम बंद हो जाएं और हमें काम ही ना मिले, क्योंकि हम तो एक ही काम जानते हैं ये, और यही नहीं यही मिलना बंद हो जाएगा तो फिर हम क्या खाएंगे, हमने माना दिल्ली में रहें मगर खाएंगे क्या।
1: अच्छा, आपकी पत्नी भी तो इसी मीडिया में है, तो आप दोनों अपने इस प्रोफेशन को, अभिनय को किस तरह से एडजस्ट करते हो? कभी प्रोफेशनल जेलसी का सामना तो नहीं करना पड़ता?
0: नहीं नहीं, क्यों, मैं जेलसी इसलिए नहीं क्योंकि मेरी बीवी मुझसे बहुत बढ़िया एक्ट्रेस है तो वो इसका मुझे अंदाजा है और मैं जानता हूँ इस बात को अच्छी तरह। दूसरी बात यह है कि मेरा ख्याल उसमें जितना सैक्रिफाइस, और मेरा ख्याल औरत जात में जितना सैक्रिफाइस करने की वो है
1: ताकत,
0: इसी वजह से जब से हमारे बच्चे हुए हैं अब तक उसने कोई काम नहीं किया, शी रिफ्यूज टू वर्क, मतलब वो अपना पूरा ध्यान बच्चों की ग्रोथ में लगाना चाह रही थी। तो अब रिसेंटली उन्होंने एक दो प्रोजेक्ट अभी साइन किए हैं, पायलट्स किए हैं, लेकिन मेरा बड़ा बेटा 9 साल का है, मेरा छोटा बेटा आदित्य 5 साल का है, बड़ा सिद्धार्थ, तो ये जब तक छोटे थे तब तक उन्होंने कोई काम लिया ही नहीं, तो इस वजह से कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि भाई वो बाहर हैं तो घर नहीं है। उसके जहन में घर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस, जहाँ पे कुछ मतलब जहाँ पे सब सही रहना चाहिए।
1: तो ये एक तरह से एडजस्टमेंट कहीं या सेक्रीफाइस
0: नहीं
1: पति के लिए?
0: नहीं नहीं, वो जो बहुत छोटी थी मेरी वाइफ अनुराधा, तो उन जब बच्ची थी खुद, तो उनसे पूछा जाता था भाई बड़े होके तुम क्या बनोगी, तो कहती थी मम्मी तो उसे शुरू से बच्चों का शौक रहा है, घर का शौक रहा है, उसे घर को सजाने का, घर को बनाने का, और बेसिकली शी इज अ होम बर्ड।
1: तो इसी एक

0: सुंदर सी बात पे कुछ आपकी पसंद का सुंदर सा गाना,
1: सुंदर सी बीवी के लिए।
0: हाँ, सुंदर सी बीवी के लिए कितने
1: तो चलिए बीवी की बात चलिए, तो फिर उन्हीं की फिल्म का एक गाना सुनाते हैं।
0: कौन सी फिल्म का?
1: उत्सव का, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मन क्यों महका।

0: आप जब छोटे थे तो तभी से एक्टर बनना चाहते थे या बड़े होने पर इस तरफ रुझान हुआ? क्योंकि हमारे माँ बाप अक्सर कहते हैं हम अपने बच्चे को बड़े होने पर डॉक्टर बनाएंगे या इंजीनियर बनाएंगे वगैरह वगैरह।
1: जी आप क्योंकि मैं सहारनपुर का हूँ
0: जी,
1: और मेरा ना कोई चचा ना कोई ताया ना कोई अंकल ना कोई आंटी यहाँ पे बम्बई में थी, तो जाहिर है मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता था कि मैं बम्बई जाकर एक्टर बनूं। तो सहारनपुर में पढ़ रहे थे, थोड़ा बीच में मसूरी भी पढ़ा मैं, तो फादर चाहते थे कि मैं आईएएस में जाऊं, पर इतनी पढ़ाई हमारे बस की बात नहीं थी। थोड़ा वो शायरी का शौक था, जो दोस्त थे हमारे और आज तक वही दोस्त हैं सहारनपुर में, वो भी बड़े आर्टिस्टिकली इंक्लाइंड थे, तो हमें फिल्में देखने का तो बड़ा शौक था। मैं दिलीप साहब का फैन था, देव साहब का फैन था बहुत बड़ा, और बल्कि हमारे ग्रुप्स होते थे, कुछ दिलीप साहब के फैन होते थे और उनके सामने आप दिलीप साहब की बुराई नहीं कर सकते थे, और कुछ देव साहब के फैन होते थे, बाकायदा झगड़ा हुआ हो जाया करता था। लेकिन ये कि एक दिन मैं खुद एक्टर बनूंगा, इसका मुझे भी अंदाजा नहीं था।
0: तो कोई फिल्म देखी थी उसका असर हुआ, कुछ तो बात हुई होगी?
1: नहीं,
0: या कोई ड्रामा किया उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा हुआ जहन पर दिमाग पर?
1: मुझे बेसिकली क्या सबसे जो जहन में प्राइम चीज थी वो ये थी कि अपने दो पांव पे खड़ा होना जल्दी से जल्दी जिंदगी में। तो जो भी उस वक्त कंपटीशन आते थे, जैसे एनडीए का आया,

0: का आया, वो ऑफिसर ट्रेनिंग यूनिट होता था उसका आया, तो मैं सब कंपटीशन में बैठ जाता था। और बल्कि मैं एनडीए में ऑलमोस्ट हो भी गया था, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम एक हो गया था उसकी वजह से मैं जा नहीं सका। तो जब ये सब चल रहा था तो उन दिनों एक फिल्म इंस्टीट्यूट का फॉर्म भी आया, तो वो मैंने फॉर्म चुपके से काट कर वो भेज दिया, और चुपके से, और अपने दोस्तों को भी नहीं बताया, क्योंकि छोटे शहर में अगर ये पता लग जाए कि इसने फॉर्म भेजा था और ये सिलेक्शन नहीं हुई तो बड़ा मजाक उड़ाया जाता कि भाई लौंडा हीरो बनने गया था, कुछ नहीं हुआ। समझा? तो इस वजह से मैंने बताया नहीं। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे कॉल आ गया।
1: स्कॉलरशिप भी मिलता था ना?
0: नहीं, स्कॉलरशिप तो नहीं मिलता था।
1: नहीं
0: नहीं, इंस्टीट्यूट में स्कॉलरशिप उन दिनों नहीं था, इन दिनों हो तो मुझे मालूम नहीं। तो हमारा दिल्ली में स्क्रीन टेस्ट हुआ, ऑडिशन हुआ, और हमने हम सेलेक्ट हो गए।
1: अच्छा, अभी तो आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो उनको भी इस लाइन में लाना चाहेंगे या वो जो खुद बनना चाहते हैं, ऐसा कुछ सोचा आप?
0: जाहिर है, देखिए हर बाप ये कहता है जो बनना चाहता है बच्चा वो बने, लेकिन मैं ये कहता हूं कि बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है, ये उम्र कोई भी उम्र हो, तो वो इंडिकेशन देता है कि उसका रुझान किस तरफ है। तो बाप को यह कोशिश करनी चाहिए जिस तरफ उसका रुझान है उसे वो सब सप्लाई करे, चीजें, इंसेंटिव उसके शौक को पूरा करने के, तो वो अपना इवेंचुअली करियर बनाएगा। तो वो मैं देख रहा हूं मेरे बच्चों को, कुछ को, एक को स्पोर्ट्स का शौक है, एक पढ़ाई का शौक है, तो अगर इसमें निकलते हैं, और अगर उनको बीच में सिनेमा का भी हो जाता है और एक्टर बनना चाहते हैं तो व्हाई नॉट, आई थिंक इज द नोबलेस्ट प्रोफेशन।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेल्यूलॉइड के सितारे, और आज इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं टेलीविजन और फिल्मों से जुड़े अभिनेता कमलजीत। आपसे बातचीत की है सविता बजाज ने।
1: अच्छा, आजकल के समय में फिल्म इंडस्ट्री को कला का गढ़ माना जाता है, गढ़ है ना, तो इसमें तो मेरे ख्याल से 1 लाख से ज्यादा कोई बता रहा था कि कलाकार हैं जिन्हें काम नहीं मिलता, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा हो गई, क्योंकि हर आदमी इसी लाइन में आना चाहते हैं। तो आपकी क्या ख्याल है इस बारे में?
0: मेरा ख्याल फिगर्स इससे बहुत ऊंचे होंगे, क्योंकि और आप इस बात की बात कर रही हैं, जब मैं फिल्म इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई कर रहा था उस वक्त मेरा दोस्त एक इंजीनियर बनने के लिए रुड़की यूनिवर्सिटी में गया था
1: जी,
0: उस वक्त 75,000 इंजीनियर खाली था। तो देखिए, एक क्लास में 60 लड़के होते हैं, पहले दो तीन तो दो तीन ही आएंगे, पांच दो तीन थोड़े आ जाएंगे, तो किसी का वो जो 60वां है, एक 60वां भी होगा वहां। तो उसको ये बात से घबराना नहीं चाहिए कि भाई मेरा नंबर 60 आया, अब तेरा नंबर 60 यहाँ आया, कहीं कोई और चीज जिम में ट्राई करेगा वहां नंबर 1 हो जाएगा। तो अपने अपना पोटेंशियल खुद देखना चाहिए, खुद ढूंढना चाहिए, ये
1: मतलब इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए, चप्पा चप्पा कोशिश करते रहना चाहिए। इसी बात पे आपको वो जो गाना अच्छा लगता है, आप भी थे ना माचिस फिल्म में,
0: माचिस
1: हो जाए,
0: बिल्कुल हो जाए,
1: जलाइए चप्पा चप्पा चरखा,
0: जलाइए माचिस।
1: तो सुनते हैं वही गाना, चप्पा चप्पा चरखा चले
0: जी।

0: कमल जी, आपको कभी कभी फुर्सत भी मिलती होगी, मतलब जब समय मिलता है शूटिंग से, तो उसका इस्तेमाल आप कैसे करते हैं?
1: देखिए, जब मुझे समय मिलता है शूटिंग से तो सबसे पहले तो मैं अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूँ, तो अपने बच्चों के साथ और घर पे अपनी बीवी के साथ हम लोग इकट्ठा रहते हैं। और अगर कुछ एक दो दिन की ज़्यादा छुट्टी हो जाए इकट्ठी, और बच्चों का भी वीकेंड हो, सैटरडे संडे हो, तो हम लोग खंडाला वंडाला चले जाते हैं। तो ऐसे हमको, हम पूरे परिवार को, हमको ट्रैवलिंग का बड़ा शौक है। तो अंग्रेजी में कहते हैं, ड्रॉप ऑफ अ हैट वी स्टार्ट फॉर एनी डायरेक्शन ऑन दिस अर्थ। तो इसीलिए मैं हर हर साल अपनी छुट्टियां जो है वो बच्चों की छुट्टियों के साथ कोऑर्डिनेट करता हूँ, एक तो दिवाली में और एक समर वेकेशन उनकी, तो उनके साथ मैं छुट्टियों पे चला जाता हूँ।
0: तो इसी बात पे कोई बच्चों के लिए गाना?
1: अब बच्चों के लिए क्या गाना, वो जब छोटा था, छोटे थे, तो इनको एक गाना बड़ा पसंद था, और मुझे आज तक समझ नहीं आई क्यों, क्योंकि वो उनकी उम्र का गाना है नहीं, लेकिन वो कुछ झूमने से लगता था, मेरा छोटा बेटा जो था, तो वो गाना है ना, रूप सुहाना लगता है, चांद पुराना लगता है। तो मेरे ख्याल से वो मेरे बेटे को चांद लफ्ज समझ में आता होगा, तो उस वजह से वी यूज टू एंजॉय दैट नंबर, तो वो सुनवा देते हैं हम।
0: ठीक है, तो आइए सुनते हैं, रूप सुहाना लगता है।

0: अच्छा, कभी मन नहीं करता आपका भी कि मैं डायरेक्शन करूं?
1: आप दीजिए डायरेक्शन, आप लाइए प्रोड्यूसर तो मैं ये भी कर डालूंगा।
0: 20-25 साल हो गए आपको लोगों की बातें सुनते कि ऐसा ऐसा करो, अभी नहीं ऐसा करो, तो आपका तो दिल करता होगा कभी मैं भी कैमरे की बाग दौड़
1: कभी मैं उसका मैं उस बंदे का कॉलर पकड़ के कहूं कि अब तुम ऐसा करो। देखिए, मैं यहाँ पे एक्टिंग कोर्स करके पूना से यहाँ आया था, बड़ा मजा आता है इस काम में, इस प्रोफेशन में, लेकिन एज यू गो ऑन तो आप भी बहुत कुछ अलावा एक्टिंग के और भी आपके जो मीडियम है से जुड़ी हुई चीज़ें वो सीखते हैं, साउंड के बारे में सीखते हैं, पिक्चर के बारे में, फोटोग्राफी के बारे में, डायरेक्शन के बारे में। तो ये मीडियम इतना फैसिनेटिंग है कि अगर मुझे कल को ये चांस मिलता है कि मैं डायरेक्टर डायरेक्शन करूँ तो मैं ज़रूर इसमें भी एक क्या कहना चाहिए गोता
0: चांस
1: वाना
0: लेना
1: हाँ चांस लेना चाहूंगा।
0: फिल्म में या सीरियल में?
1: किसी में भी,
0: किसी में। अच्छा, कहते हैं ना कि डायरेक्टर बड़े आर्टिस्टों को डायरेक्ट नहीं करता बल्कि आर्टिस्ट उन्हें डायरेक्ट करते हैं। ये क्या बात सही है?
1: पहली बात तो बड़ा आर्टिस्ट कौन है, क्योंकि मैं तो ऐसा नहीं करता हूँ। तो अगर आप हाँ, मैंने आज तक कभी हमेशा अपने डायरेक्टर की सुनी है। हाँ, देखिए आर्टिस्टिक डिस्कशन जो हमारी सेट पे होती है कि भाई अगर हम ऐसा कर लें तो शायद ये ज़्यादा स्पॉन्टेनियस लगे, अगर हम यूँ डायलॉग लाइन को यूँ करें तो शायद ये डायलॉग ही ना लगे और ऐसे लगे कि वाकई बातचीत हो रही है दो कैरेक्टर्स के बीच में, तो इतना तो हमारा दखल है ही और होना भी चाहिए। आफ्टर ऑल वी आर नॉट पपेट्स, हम लोग कठपुतलियाँ नहीं हैं, एक्टर्स आर नॉट कठपुतलियाँ, हम सोचने वाले जीव जंतु हैं। और हमको इस बात का थोड़ा बहुत ज्ञान भी रहता है कि ये लफ्ज जो है या ये लाइन ये डायलॉग ही लगेगी, क्लीशेड लगेगी, मेलोड्रामेटिक लगेगी या के सच्ची लगेगी। सच्चा लगना बड़ा जरूरी है।
0: ये सच्ची बात जो है आपने बोला, सच्चा लगना जरूरी है। कहते हैं कि अच्छा एक्टर वही होता है जो कि अच्छा इंसान होता है, तो ये बात भी क्या सही है? क्योंकि मैंने देखा है कई एक्टर बड़े अच्छे हैं बट बेसिकली दे आर नॉट गुड ह्यूमन बींग्स।
1: मुझे ऐसा लगता है कि अगर आदमी एक्टर अच्छा है, अगर आर्टिस्ट अच्छा है, चाहे वो पेंटर है चाहे वो एक्टर है, तो उसके काम से आप लुत्फ लीजिए ना, वो बुरा है या अच्छा है भाड़ में जाए।
0: वाह वाह, बहुत अच्छा। अच्छा, कभी आप पीछे मुड़ के देखते हैं जहां से आपने शुरुआत की और उसके आप तो बहुत सीढ़ियां आगे चढ़ लिए, तो पीछे मुड़ के देखते हैं तो पीछे बहुत सारे साथी छूट चुके होते हैं, कुछ को सफलता मिलती है कुछ को सफलता नहीं मिलती, आपको कैसा लगता है ये?
1: देखिए, ऐसा आया कि मेरे साथ जो थे इंस्टीट्यूट से निकले वो मेरा ख्याल अगर इस लाइन में कुछ मकाम हासिल नहीं कर पाए तो कहीं और हैं और बड़े अच्छे ओहदे पे हैं, बड़ी अच्छी पोजिशंस पे हैं। पीछे मुड़ के मैं नहीं देखता, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ। मैं कोशिश नहीं करता पीछे न देखने की, पर मैं
0: तो ये बात भी क्या सही है? क्योंकि मैंने देखा है कई एक्टर बड़े अच्छे हैं बट बेसिकली दे आर नॉट गुड ह्यूमन बींग्स।
1: मुझे ऐसा लगता है कि अगर आदमी एक्टर अच्छा है, अगर आर्टिस्ट अच्छा है, चाहे वो पेंटर है चाहे वो एक्टर है, तो उसके काम से आप लुत्फ लीजिए ना, वो बुरा है या अच्छा है भाड़ में जाए।
0: वाह वाह, बहुत अच्छा। अच्छा, कभी आप पीछे मुड़ के देखते हैं जहां से आपने शुरुआत की और उसके आप तो बहुत सीढ़ियां आगे चढ़ लिए, तो पीछे मुड़ के देखते हैं तो पीछे बहुत सारे साथी छूट चुके होते हैं, कुछ को सफलता मिलती है कुछ को सफलता नहीं मिलती।

0: आपको कैसा लगता है ये?
1: देखिए, ऐसा आया कि मेरे साथ जो थे इंस्टीट्यूट से निकले, वो मेरा ख्याल अगर इस लाइन में कुछ मकाम हासिल नहीं कर पाए तो कहीं और हैं, और बड़े अच्छे ओहदे पे हैं, बड़ी अच्छी पोजीशंस पे हैं। पीछे मुड़ के मैं नहीं देखता, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ। मैं कोशिश नहीं करता पीछे न देखने की, पर

0: अच्छा कमल जी, आप एक्टिंग के अलावा क्या करते हैं?
1: एक्टिंग
0: एक्टिंग के अलावा एक्टिंग
1: देखिए बेसिकली
0: मतलब 24 घंटे आप एक्टिंग करते रहते हैं, वेदर कैमरा इज ऑन और
1: नहीं। ये मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सबसे पहले ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो एक्टिंग है जो मैं उसके सामने करता हूँ
0: कैमरे
1: के सामने, उसमें से एक्टिंग बिल्कुल खत्म कर दूं।
0: अच्छा
1: तो हाँ, तो बाकी क्योंकि सारी जिंदगी में हम एक्टिंग करते ही रहते हैं, तो कम से कम यहाँ से बिल्कुल निकाल के इसका वजूद खत्म करना चाहता हूँ। कितना कामयाब हुआ हूँ ये पता नहीं, लेकिन कोशिश मेरी यही है। बाकी इसके अलावा मैं मुझे शौक है खेलने के, आई हैव बीन अ स्पोर्ट्समैन बचपन में, स्कूल में भी और अब भी टेनिस खेलता हूँ मैं, और टेनिस से बहुत लगाव है, बहुत इश्क है, और क्रिकेट से भी। अपने बच्चों के साथ घर में जब बीवी नहीं होती तो फुटबॉल खेलता हूँ, तो क्योंकि बीवी हम लोग को खेलने नहीं देती तो जब वो घर में होती हैं तो हम लोग थोड़ा बाहर आंगन में खेल लेते हैं, जब वो बाहर होती हैं तो फिर हम लोग अंदर खेल लेते हैं मैं और मेरे दोनों बच्चे।
0: अच्छा, तो आप उनकी मदद भी करते होंगे किचन में या वो आपकी ही मदद करती रहती
1: है? नहीं, मैं उनकी मदद इस लिहाज से करता हूँ कि मुझे खाने का बड़ा शौक है तो वो खाना इतना अच्छा लजीज बनाती हैं कि मैं उसको खाने में मदद करता हूँ। बाकी मुझे खाना, हालांकि आई एम सरप्राइज माई सेल्फ क्योंकि मैंने इतना लंबा अरसा बैचलर लाइफ लीड की है मुंबई में कि और अकेला रहा हूँ जिंदगी में, लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आया और खाना बनाने की कोशिश भी नहीं की मैंने। हालांकि मेरा एक भाई है वो बड़ा अच्छा खाना बनाता है, मुझे नहीं बनाना आता।
0: अच्छा, आपके आने वाले कोई सीरियल या फिल्म?
1: या एक अभिमान कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं राकेश सारंग, उनके साथ कर रहा हूँ, मनीष गोस्वामी का सीरियल है और वो आने वाला है। बाकी 3 ऑलरेडी चल रहे हैं तो मुझे वक्त भी नहीं है कि मैं ज़्यादा कर सकूँ। ये खत्म होने वाले हैं कुछ, सांस जैसे हुआ ये खत्म हो जाएगा तो फिर दूसरा आई टेक ऑन। एक आधा पायलट किया हुआ है और पायलट किए नीना के साथ, दूसरा हमारा पायलट शूट होने वाला है, तो ऐसा

0: ओवरलोड नहीं करता मैं काम से अपने आप को,
1: मतलब जितना कर सकते हैं उतना ही लेते हैं आप।
0: हाँ, जितना अपनी पूरी एबिलिटी, अपना पूरा कंसंट्रेशन मैं जिस काम को दे सकूं वही करता हूँ। तो अच्छा अच्छा, आप मेरी पसंद के गाने तो सुनते रहे, आपको क्या पसंद है?
1: मुझे आपने एक बहुत बड़ी फिल्म की थी, हाँ, सत्ते पे
0: सत्ता, जी हाँ जी,
1: है ना,
0: हाँ, तो उसका गाना प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया। चलिए साहब।

0: कमल जी
1: जनाब,
0: अगर आप अभिनय नहीं करते तो क्या करते?
1: हाँ, अभिनय नहीं करता, मैंने जैसे शुरू में बताया मैं फौज में जाना चाहता था, एयरफोर्स में, तो वहाँ इवेंचुअली नहीं जा सका कुछ वजह, तो मुझे समझ नहीं आता वाकई मैं क्या करता, क्योंकि ये काम इसमें आने के बाद मुझे इससे इतना इश्क हुआ इस काम से कि मुझे नहीं लगता कि मैं कोई और काम कर सकता।
0: मतलब आदमी बेकार हो जाते
1: हैं। हाँ, बेकार
0: कर ही नहीं सकता एक्टर बन के।
1: नहीं, एक्टर बन के बेकार हो जाता है ये तो नहीं मुझे मालूम, लेकिन इसको इससे
0: मतलब
1: इश्क हो जाए, अगर इससे इश्क हो जाए तो फिर मतलब और कुछ कर नहीं सकता। हाँ, अगर मैं ना, अगर एक और चांस दिया जाता मुझे तो शायद मैं स्पोर्ट्समैन होता, शायद मैं टेनिस खेलने लगता।
0: अच्छा, कई ऐसे भी डायरेक्टर हैं जिनके साथ आप काम करना चाहते थे, आपको मौका नहीं मिला, या कोई ऐसे स्टार्स, आपने बहुत सारे स्टार्स के साथ काम किए, कोई बचा होगा जो आपके फेवरेट रहे हो और आपको मौका नहीं मिला होगा? तो आप तो अभी ऐसे स्टेज पर हैं कि आप जिसके साथ चाहें काम करना चाहें आप कर सकते हैं, तो अभी आप किनके साथ काम करना चाहते हैं?
1: देखिए, जिनके साथ मुझे मैंने काम किया है ऑलरेडी उनको मैं जानता हूँ, और उनमें मोस्टली बड़ा मज़ा आया है सबके साथ काम करने में, और जिनके साथ मैंने काम नहीं किया उनके बारे में मैं ज़्यादा जानता नहीं, तो मैं कह नहीं सकूँगा। और मुझे अच्छा लगता है जब मैं वैरायटी ऑफ एक्टर्स के साथ काम करता हूँ, अलग अलग रिएक्शन मिलते हैं, वरना एक वो होता है इंस्टिंक्टिवली।

0: आपको मालूम है अगला क्या करने वाला है, तो आपका परफॉर्मेंस और जो इंटरेक्शन है वो जरा रेपिटेटिव हो जाता है।
1: नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि आप ऐसे कोई स्टार तो होगा ना आपका फेवरेट जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं, या कोई डायरेक्टर कि इतने सालों तक तो आपको चांस नहीं मिला, अभी तो आपका समय आ गया।
0: नहीं नहीं, मैं अच्छी स्क्रिप्ट में काम करना चाहता हूँ।
1: ऐसा कोई फेवरेट नहीं है, लॉन्गिंग नहीं है कि मैं उसके साथ काम करूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। चलिए इसी बात पे एक गाना सुनवा दीजिए, थोड़ा मूड अच्छा हो जाए।
0: मूड अच्छा हो जाए, चलिए। तो फिर अपनी बीवी के बात जब करता हूँ तभी मूड अच्छा रहता है।
1: ठीक है।
0: तो उन्हीं की फिल्म का एक और गाना सुना देते हैं आपको, मेरा वो सामान लौटा दो। गुलजार साहब ने बहुत ही खूबसूरत गाना लिखा है।

0: इस गीत के साथ ही मैं कमल जी आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे स्टूडियो में आए, विविध भारती स्टूडियो में आपने हमें अपना अनमोल समय दिया, धन्यवाद।
1: धन्यवाद
2: श्रोताओं, आज इस प्रोग्राम में आप सुन रहे थे टेलीविजन और फिल्मों से जुड़े अभिनेता कमलजीत से सविता बजाज की बातचीत। इस कार्यक्रम के निर्माण में तकनीकी सहयोग दिया दिनेश दाभोलकर ने, प्रस्तुति सहयोग रमेश गोखले का था और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने।

0: सभी सुनने वालों को नमस्कार। मैं हूं आपके साथ, मेरा नाम है सलमा। छाया गीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मुझे तुमसे बेहतर की ख्वाहिश ना थी ना रहेगी। तुम्हारी जरूरत थी, जरूरत है और रहेगी। दुनिया लाख हसीन चेहरे दिखाए, दिल ने तुम्हें चुना, तो फिर किसी और की ख्वाहिश कहाँ रहेगी। एक ही शख्स में सब कुछ पा लिया, इश्क भी मोहब्बत भी, प्यार दोस्ती रूह का सुकून दिल का करार भी। तू मेरा अपना भी है और मेरी दुनिया भी, मैंने खुद को तुझ में पा लिया। अब अगर कोई पूछे कहाँ है मोहब्बत, जवाब होगा सिर्फ तुम।
1: कौन है?

मुझे शौक नहीं था मोहब्बत का, तुझे एक नजर क्या देखा, दिल बगावत कर बैठा, फिर ना अक्ल ने साथ दिया, ना दिल ने कोई दलील मानी, बस एक तुम और तुम्हारी याद जिसने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। ये मोहब्बत मेरे दिल की किस्मत बन गई, तुझे गले से लगाकर बताऊं कितनी रातें तेरी याद में जागकर गुजर गईं, तुझसे दूरी में कितनी बेचैनी, तन्हाई में कितने लम्हे तेरा नाम लेते हुए ठहर गए। काश तू एक बार करीब आ बैठे, मैं लफ्जों के बगैर अपनी कैफियत सुना दूं कि तुम दूर होते हो तो जिंदगी सूनी बेनूर सी लगती है मुझे।

हम खामोश रहे और तुम बात समझते गए, हम नजरें चुराते रहे और तुम हाल पढ़ते गए, हम हाले दिल छुपाते रहे और तुम करीब आते गए, फिर बेपनाह इश्क हुआ और तुम दिल के मालिक बन गए। तेरे होने से जिंदगी में कोई सवाल नहीं, तेरा हाथ थामा तो सफर में कोई मलाल नहीं, तुझे पाकर अब किसी खुशी का इंतजार नहीं, राहे मोहब्बत में तू मिला तो दिल पे अब कोई अख्तियार

पत्थर मुझे कहता है, मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ। उसने मुझे छूकर नहीं देखा। छाया गीत कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल।

कहानी से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत, पलकों के किनारे जो हमने कभी भिगोए नहीं, उन्हें ये लगता है कि हम कभी रोए नहीं। पूछते हैं किसे देखती हो ख्वाबों में, उन्हें क्या खबर कि हम बरसों से सोए नहीं। दिल में छुपा है जो जुबां से कहें कैसे, मोहब्बत है तुमसे अब ये बताएं कैसे। जज्बाए इश्क सच्चा ना होता तो रास्ता बदल लेते, मेरे रास्तों का गुजर तुमसे तुम तक है, सांसों का सफर तुमसे

है। हाँ, मेरी मोहब्बत भी तुमसे तुम तक है। दिल जिसे भूल नहीं सकता वो धड़कन हो तुम। तुमसे है मेरी दुनिया हसीन, मेरी पहली मोहब्बत हो तुम।

उनसे मिलने की ख्वाहिश भी अजीब ख्वाहिश है। दिल ने हर ख्वाब में तुमको पुकारा है, तुम आओ करीब तो वक्त ठहरने लगता है। तुमसे बिछड़ना दिल को कहाँ गवारा है, ना तुमसे दूर रहने की ख्वाहिश ना भूलने का हुनर। तुमसे जुड़ी मेरी हर बात अब किसी बात की तमन्ना नहीं दिल में। तुम मिले तो मुकम्मल हुई मेरी तन्हाई, तुम मिले तो मुझे खुद से भी हुई मोहब्बत। तुम्हारा जिक्र हुआ तो महक गई तन्हाई, जैसे खामोश फिजा में उतर गई रानाई। तेरी आवाज में कुछ पाया ऐसा सुकून, जैसे धड़कते हुए दिल को मिले अपनी गहराई। तुम्हें सोचा तो लगा वक्त भी ठहरने।

दिल से उतर कर दिल में ही रहा करते हैं, कुछ ताल्लुक भी अजीब हुआ करते हैं। लोग चेहरों से मोहब्बत का सबक पढ़ते हैं, अपने दर्द को दिल में छुपाए रखते हैं। किसी ने पूछा मुस्कुरा के हाल हमारा, दिलों में तूफान लब पे खामोशी रखते हैं। वफा के नाम पे ये जो जख्म मिल गए हमको, उन्हें दिल में तुम्हारी अमानत बनाए रखते हैं।

0: का।
1: तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है। साथियों, अब वक्त आ गया है छाया गीत कार्यक्रम से रुखसत हो जाने का। तो आज की मुलाकात बस इतनी। अब दीजिए सलमा को इजाजत। शुक्रिया, नमस्कार। विविध भारती से छाया गीत कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है राघवेंद्र सिंह नेगी।

कार्यक्रम तराने नए पुराने में आप सभी का स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से गाने के साथ। इसे गाया है लता मंगेशकर ने, फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका

0: कृषि और पशुपालन भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार और आत्मा है। हमारे अन्नदाता जहां एक ओर अपने कठोर परिश्रम से अनाज उगाकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, वहीं पशुपालन के जरिए अपनी आय भी बढ़ाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार इन दोनों क्षेत्रों को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य करते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की मदद की जाती है, जिससे 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को अब तक 3.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिली है।
1: पीएम किसान सम्मान निधि भारत के किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी। उनके छोटे छोटे खर्चों के लिए ये किसान सम्मान निधि बहुत काम आ रही है।
0: पीएम किसान की 18वीं किस्त के रूप में आज प्रधानमंत्री द्वारा 9 करोड़ 40 लाख से अधिक पात्र किसानों को 20,000 करोड़ से अधिक की धन राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। इसी के साथ नमो शेतकरी महासम्मान निधि की भी 5वीं किस्त जारी की जा चुकी है, जिसमें महाराष्ट्र के 91 लाख से अधिक किसानों को 2,000 करोड़ से अधिक का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। भारत सरकार की ऐतिहासिक 10,000 FPO योजना के अंतर्गत 9,000 से अधिक FPO का पंजीकरण सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है, जिनमें करीब 23 लाख मेहनतकश किसान शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2020 में शुरू की गई एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत किसानों को 2 करोड़ रुपए तक के

वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे विकसित भारत की आधुनिक कृषि अवसंरचना का विकास हो रहा है। वर्तमान सरकार गठन के 100 दिनों के भीतर 6,500 करोड़ की लागत से 10,000 से अधिक परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इसी अवधि में 7,516 परियोजनाएं पूरी हुई, जिसमें 1,929 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि शामिल है। भारत सरकार के राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत देशी नस्ल के गायों एवं भैंस की गुणवत्ता में तेजी से सुधार एवं दूध उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी से देश में श्वेत क्रांति द्वितीय चल पड़ी है।

0: राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत देशी नस्ल के गायों एवं भैंस की गुणवत्ता में तेजी से सुधार एवं दूध उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी से देश में श्वेत क्रांति द्वितीय चल पड़ी है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान से दो बड़े कदम आज देश को समर्पित किए जा रहे हैं। गौ सॉर्ट स्वदेशी सेक्स सॉर्टिंग तकनीक से बछड़ी पैदा होने की सफलता दर 90% है, जिससे 8 करोड़ डेयरी किसानों को लाभ होगा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और ICAR NBAGR के साझा वैज्ञानिक कार्यक्रम से विश्व में पहली बार देशी गाय और भैंस में अच्छे नस्ल की त्वरित पहचान के लिए गौ चिप और महिष चिप नामक जेनोमिक चिप तैयार कर लिए गए हैं, जिनसे नस्ल सुधार कार्यक्रम दुगनी तेजी से चल पाएंगे। ये सुविधा कोई भी किसान NDDB के काफ लैब एवं KLDB के लैब से उचित दाम पर ले सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में कृषि और पशुपालन के समन्वित विकास से भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और सरकार किसानों
1: आणि पुइलानी कॉकलबनी बुमु इकोले इकोले इकोले ताबुक से रुतुक मान शिवो फिल फिले रुतुक माले रुतुक मान खाता बुकले सिया आंग अंगी तोमानी सियुंग अंग खाता बुकले आसक खैजाक फाइमानी ताइ खैजाक लिया ताइले लगी लागाय अंगलायमानी सापनाय फायका ताबुकले इकोले इकोले हनै चिरिक तंखा दलसाले नुगुइबो नुग्याहाय अंगै तंखा नरकले बियकनानी लामा तंसा तंमानी थांना नायलेया बाक्सा आ लामा हिमनानी हिमना मुचुंखाय तिसावै खरक मकल कायसमै नासिक दिनरक हिमना चाइटक दि पाल खे नरक खुंजु कायसमै खना दि नरक इकोले चिनी चाबरक चायैता तंनि नरक गुदक चाखै मजदेंग्रक हांजाक पेंजाक रुगजाग्रक चातां इकजाक मुइत्रुरक आउंद्रु बेरमा बुतुई तेचंप्रेंग्रक जे अचामुंग चानायरक उमर कलक खेतंलां खाबरक इकोले चिनी कानब्रक कानलाइदि चुमलाइदि नरक रिगनाय चामथै कान्ति खे खाजाओ रिसा सर्ती खे यागोमाथिया कतगो गांथी खाजुओ सुरां बर्ती खे सावै साबाइया नायै नायबैया नायथक थानि चिनि तिप्राजोग बुरै रक्न बुइ बाय सुदायग्रै जिला रक्नबो नायदि ततरा फानमानि ललाय रक कुताय रिबरक चुमनाय रक बुइनि सायबारा नायथक मानि चिनि तिप्रा सासला रक इकले चिनि तमुं रक वानाय ताकनाय गोरों रक बलं सगै हुक खायनाय रक जादु कलेजार चाबै हुक हाबा तांनाय रक हुगन संगै माइ जानाय रक साल हरसिया सामुं तांनाय रक साक्न हामजाकतै बुइन हामजाकनाय रक तंकरै रुपैरै बागै जानाय रक चाब चाब चाउइबो चाबाया रक आसुके कतर कतर माइ गुला रक वाक तक ताखुम पुन मुसुक मिसिप कराय ते मायुं सेरिउइ फायनाय रक ब्यां थांबाय के आतंमुं रक कतगो रां बुतां कानै तंनाय रक रांचाग रुख फाइसे हाव फमनाय रक बियाल तामनो हिंसाइसे मान्य रक रांबुसु रुइसे सेबुग्र साइ नाहनाय रक ब्यां थांबाय के आर रां पैसा रक खलाय बायसे थाइबागनाय रक जे नुहुरसाक नादि हिनाय रक ब्यां थांबाय के नरकनि आ थाय रक बेबाक न कमरना नाय तंबाय के सिउइ बसिया हाय तामनि एंखा आनि ते कैसा कक्लमनि बुमुं वान सुख दि आसु आसुई सं कायलेंमा खुमरक ताबुक बुबारै तंख मतम जीब जीब खुमनि बाहाय ताबुक सारै तंख कुंकिला पुंमानि कुहु कुहु खरां ताबुक पुङै तंख हुक हाबाव माइजु चालायमा ताबुक मैतु मानख वासुंग तखान पेङै चामारक ताबुक चालाय तंख मानि ककथाय कबरक कग्न सानाय गोरै देंन वायें खिलिवै आमार चापमा रिसाब जायगा देंन चिनि लाइबुमा कथमारकन खोनानाय गोरै देंन अक्तां कथमा खोनातक बिजाब गोमावै दे कमर थांन रिगनाय चामथुक आसुखे नायथक गान्नाय गोरै देंन रिसा सरबांगी आसुखे नायथक तैनाय गोरै देंन चिनि मुकुमु हुकुमु रकन साबोबा मोथां फायन बिरिं परखे क्लाय तंमानो साबोबा थुमसा क्लायन खरां स्लोगै गाबै तंमानो साबोबा बानि फायन बलं कुथुगो हिमै तमाहाय बुफ्रु ग्लां सापान तैबिसिङो क्लोग तमाहाय बुफ्रु कुफुं

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।